FM 103 MHz पर हम आकाश वैन के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संबत 1948 के आश्विन मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 29 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण क्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता सशस्त्र बलों की परिचालन में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। विधानसभा 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेशे कार्यक्रम खेती की बातें। आई जानकारी प्राप्त करते हैं जौ की खेती पर। आलेख और वाचन स्वर प्रतिमा वर्मा का।
2: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जौ की खेती की। जौ पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। जौ एक तेजी से बढ़ने वाली पर्यावरण हितैषी, उच्च ऊर्जा युक्त, औषधीय गुणों से संपन्न, पौष्टिक हरा चारा देने वाली और अत्यधिक अनुकूल क्षमता वाली फसल है। हरित क्रांति से पहले यह एक मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में अपने देश में उगाया जाता था। यह भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल भी है जो विश्व के 4 प्रमुख फसलों में से एक है। मुख्य रूप से जौ पशुओं के लिए हरा चारा और दाना के रूप में प्रयुक्त होता है। आज भी किसान जौ की खेती अन्न, चारा और पशु आहार के रूप में करते हैं। इन्हीं उद्देश्यों यानी दाना और चारा की पूर्ति के लिए हमारे देश में ठोस शोध प्रयास से जौ की प्रजातियां का विकास किया गया जिनसे हरा चारा के साथ साथ दाना भी मिल जाता है। किसान भाइयों, जौ शीतोष्ण जलवायु की फसल है लेकिन सम शीतोष्ण जलवायु में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जौ की खेती के लिए ठंडी और नम जलवायु उपयुक्त रहती है। जौ की खेती अनेकों प्रकार की भूमियों जैसे लवणीय, क्षारीय, हल्की मिट्टी, बलुई से लेकर दोमट मिट्टी वगैरह में भी की जा सकती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए हैरो और कल्टीवेटर से खेत की अच्छी तरह जुताई कर पाटा चला दें। खेत को 2 से 3 वर्षों में लेजर लैंड लेवलर से समतल करना अति आवश्यक है। इससे जहां एक तरफ पानी की 30 से 50% तक बचत होती है वहीं पैदावार भी अच्छी मिलती है। खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक है ताकि सिंचाई सही प्रकार से की जा सके और असिंचित क्षेत्रों में वर्षा का जल का उपयोग समुचित हो सके। सिंचित क्षेत्र में पलेवा करने के बाद खेती की तैयारी करें ताकि जमाव अच्छा हो।

0: सीड ड्रिल से पंक्तिबद्ध बिजाई को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। पंक्तिबद्ध बिजाई से प्रति वर्ग मीटर पौधों की संख्या अच्छी रहती है, जिससे चारा और दाना दोनों का उत्पादन अच्छा होता है। अच्छी उपज लेने के लिए किसानों को अनुमोदित प्रजातियों की बुआई के समय और उत्पादन स्थिति के अनुसार करनी चाहिए। जौ की उन्नत किस्में सिंचित क्षेत्रों में समय से बुआई के लिए हम आपको बता देते हैं। DWRB52, DL83, RD2668, RD2503, DWR28, RD2552, BH902 आदि किस्में प्रमुख हैं। सिंचित क्षेत्र में देर से बुआई के लिए RD2508, DL88 आदि किस्में प्रमुख हैं। असिंचित क्षेत्र में समय से बुआई के लिए RD2508, RD2624, RD2660 किस्में अनुशंसित की जाती हैं। किसान भाइयों, हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान राज्य बीज निगम और भारतीय बीज निगम से आप प्राप्त कर सकते हैं। बीज जनित बीमारियों से बचने के लिए बीज उपचार आवश्यक है। खुली कंगियारी रोग से बचाव के लिए 2 ग्राम बाविस्टिन या वीटा वैक्स प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचारित करें। दीमक से बचाव के लिए 150 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफास 20 ईसी को 5 लीटर पानी में डालकर घोल बना लें और इससे 100 किलोग्राम बीज का उपचार करें। जौ के पौधों में कंडी यानी आवृत कालिका का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए ग्रसित पौधों को खेत से निकाल देना चाहिए, किंतु बोने के पहले आप बीजों का उपचार एग्रोसन GN द्वारा कर लें तो अच्छा होगा। असिंचित अवस्था में जौ की खेती के लिए 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि पानी कम उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई बुआई के और दूसरी सिंचाई हरे चारे की कटाई के तुरंत बाद 50 से 55 दिन बाद करें। तीसरी सिंचाई दाना बनाते समय 90 से 95 दिन होनी चाहिए। हल्की सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जब पौधों का डंठल बिल्कुल सूख जाए और झुकाने पर आसानी से टूट जाए तो मार्च अप्रैल में पकी फसल को काटना चाहिए। फिर गट्ठरों में बांधकर शीघ्र मड़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों तूफान और वर्षा का अधिक डर रहता है। किसान भाइयों, हरे चारे के लिए मैदानी भाग में बुआई से 50 से 55 दिन बाद और पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 70 दिनों की अवस्था में करें। दोनों के लिए फसल पकने पर कटाई करें। चूंकि जौ की फसल अधिक पकने के बाद झड़ने लगती है, इसलिए कटाई शीघ्र करें। साथ ही सही शीघ्र कटाई के लिए कंबाइन का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अच्छे प्रबंधन द्वारा जौ की फसल से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा और 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना आसानी से लिया जा सकता है। इस प्रकार जौ की खेती करने से हम पशुओं के लिए हरा चारा और फसल दोनों की प्राप्ति भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। ये बातें हुई जौ की, और इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस कान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 289।
2: एपिसोड नंबर 289।

लंका की अटारियों में आग लगा, सीता जी का चिन्ह चूड़ा मणि लेकर पवन सुत हनुमान इस पार लौट आए हैं। इस शुभ समाचार से वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई है। हनुमान को हृदय से लगाकर श्रीराम ने जनक नंदिनी का हाल पूछा तो कपीश्वर ने प्रभु के विरह में तड़पती सीता का संदेश कह सुनाया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस कांड। आइए सुनते हैं चिंतन कार्यक्रम। न रहो न निराश करो मन को, इस विषय पर चिंतन आइए सुनते हैं। आलेख और वाचन स्वर है निर्मला तिवारी का।

न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कविवर मैथिली शरण गुप्त की यह कविता मनुष्य को कर्तव्य पथ का बोध कराती है और आशा का संचार कर मन में जोश भर देती है, और आज के संदर्भ में यह प्रासंगिक है। जब मानव निराश हताशा से घिरा, धैर्यहीन विचलित होकर कई तरह के विकारों से ग्रसित हो स्वयं अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर देता है और आत्महत्या का रास्ता चुन लेता है। दुर्लभ मानव शरीर को वह स्वयं ही समाप्त कर देता है, यह बेहद चिंतनीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग से ही यह मानव तन प्राप्त होता है और यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सब संत जन कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं। वैदिक परंपरा में माना जाता है कि 84 लाख योनि में आत्मा के भटकने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर बड़े ही पुण्य और सत्कर्मों के बाद मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिंदगी से प्यार करते हुए अपने सत्कर्मों से अपना नाम ख्याति प्राप्त कर एक मिसाल बनना चाहिए। आज की भागम भाग जिंदगी में लोग जीना भूलते जा रहे हैं। अस्त व्यस्त दिनचर्या, अनियमित खान पान से स्वास्थ्य मन विकारों से ग्रसित है। बड़ों को छोड़िए, बच्चे भी समस्याओं से घिरे होते हैं। मन में नकारात्मक विचारों ने घर कर लिया है, जिंदगी बोझ लगती है और ऐसे में कई लोग अवसाद ग्रसित होकर आत्महत्या कर लेते हैं, जो अफसोसजनक और चिंतनीय है। बदलते परिवेश में कम उम्र के किशोर किशोरियों के मन में आत्महत्या के विचार पनपने लगते हैं। छोटी से छोटी समस्या भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और मृत्यु की सोचने लगते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इधर के कुछ वर्षों में आत्महत्या के मामले में किशोर वय लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो चिंतन का विषय है। आखिर लोग क्यों अपनी कीमती जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं? इन सब के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एकल परिवार, अस्वस्थ तन मन, निराशा, नशापान, मनोविकार, जिसके कारण लोगों की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो रही है। इसके साथ ही जल्द से जल्द सब कुछ पा लेने की लालसा, धैर्य की कमी, अनियमित दिनचर्या, एक दूसरे से दूरी, यह सब मनुष्य को मानसिक कमजोरी की ओर ढकेल देती है और मानव घबरा जाता है। यही कारण है कि लोग अपनी जिंदगी को स्वयं ही समाप्त कर लेते हैं। कारण जो भी हो, यह सही नहीं है। दुर्लभ मानव जीवन को यूं ही समाप्त कर दिया जाए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख से भरा है यह जीवन, धूप छांव की तरह है जीवन, फिर इससे क्यों घबराना। मनुष्य के पास इतनी शक्ति है, ऊर्जा है कि अगर वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने धैर्य नहीं खोया, तूफानों में भी दिए जला दिए, संघर्ष मानसिक शक्ति से वह कार्य कर दिखाया जो असंभव था। तो फिर क्यों हम थोड़ी सी परेशानी में ही हार मान लेते हैं? नर हो न निराश करो मन को। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यही संदेश दिया है अपनी कविता से कि तुम अपने में निराशा के भाव कभी मत लाओ। तुम नर हो, तुम्हारा काम परिश्रम करना है, व्यर्थ में अपना जीवन मत गवाओ। जी हाँ, तो आइए चिंतन के इन क्षणों में हम संकल्प लें कि अपने जीवन को हम भरपूर जिएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे।

इसके साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में ये सुनते हैं भेंट वार्ता घुटना प्रत्यारोपण पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ, हड्डी रोग विशेषज्ञ।

0: कल्याणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा नमस्कार। श्रोताओं, घुटने में दर्द की शिकायत आजकल आम समस्या हो गई है, खासकर बुजुर्गों में। आजकल 10 में से 8 लोगों की इसकी शिकायत है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान इतना आगे निकल गया है कि इसका विकल्प ढूंढ लिया गया है। अब घुटना प्रत्यारोपण के माध्यम से ये परेशानी दूर हो सकती है, ऐसा कहते हैं जिन्होंने इसका इलाज कराया है और जो इसके विशेषज्ञ हैं। घुटना प्रत्यारोपण क्या है, कब कराया जा सकता है, कैसे, कहाँ, ढेर सारी बातें हैं जो आप जानना चाहते होंगे। आइए आज इसी विषय पर आपको जानकारी दिलवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के युवा हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं घुटना प्रत्यारोपण का जिनका ये विशेषज्ञता जो प्राप्त कर रहे हैं, डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ। डॉक्टर प्रवीण, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपको हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, ये घुटना प्रत्यारोपण क्या है?
1: घुटना प्रत्यारोपण, आज आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने दिनचर्या में चलने में असमर्थ हैं, या उन्हें घुटनों में दर्द होता है, दिन का काम नहीं कर पाते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसे कुछ मरीजों में हम घुटना का प्रत्यारोपण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हिस्सा घुटने में खराब हो गया है उसको हम कृत्रिम तरीके से बदल देते हैं, जिसके वजह से वो आराम से चल सके, अपनी दिनचर्या में आराम से रह सके तथा अपनी जिंदगी आराम से जी सके।
0: ये किनका किया जा सकता है, कैसे लोगों का किया जा सकता है, यानी किस उम्र के लोगों का किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। घुटना प्रत्यारोपण का मेन जो क्राइटेरिया है उसमें है दर्द, मतलब आम दिनों में चलने में होने वाला दर्द जो आपको बाध्य कर देता है कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक से ना निभा पाए। मोस्टली मुख्यतः इसमें वो मरीज होते हैं जो एक उम्र की सीमा को पार कर जाते हैं, 40 के बाद, ओल्ड पेशेंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी में गठिया आपने सुना होगा, गठिया की वजह से घुटना खराब होना, या इन्फेक्शन के बाद घुटनों का आपस में चिपक जाना, इन सारे कठिनाइयों में हम घुटने का प्रत्यारोपण कर सकते हैं।
0: और एक घुटना प्रत्यारोपण हो गया, अगर कोई भी व्यक्ति को इस तरह की परेशानी हो और घुटना प्रत्यारोपण वे अगर कराएं तो कितना प्रतिशत संभावना है उनकी परेशानी दूर हो जाने की?
1: देखिए, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। जैसे आप घुटना प्रत्यारोपण की बात कर रहे हैं तो घुटना प्रत्यारोपण कराने के बाद इंसान जमीन पर पालथी मार के नहीं बैठ सकता है। इसको छोड़ के वो सारे काम दैनिक दिनचर्या, जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना, उठना, बैठना, अपना काम करना, चलना फिरना या थोड़ी बहुत खेल, वो आराम से कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, घुटना प्रत्यारोपण में घुटने का कौन सा हिस्सा बदला जाता है?
1: अच्छा सवाल पूछा आपने। घुटना बेसिकली हम पहले पेशेंट्स के कंप्लेन, जो उसकी बीमारियां हैं, तकलीफ है, उनको समझते हैं, घुटने में होने आने वाली विकृतियों को समझते हैं, एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में देखते हैं कि कौन सा हिस्सा कितना खराब हो गया है। आज के समय में दो तरह से मुख्यतः घुटने को बदला जाता है, एक है यूनि कंपार्टमेंट और एक ऑल कंपार्टमेंट, जिसमें एक यूनिकोंडाइलर नी होता है और एक में सारे तरह सतह को, जिसमें फीमर के नीचे के हिस्से, टीबिया के ऊपर के हिस्से तथा पटेला के सरफेस रीसरफेसिंग करते हैं।
0: ये बात सोचना स्वाभाविक है कि घुटना प्रत्यारोपण अगर किया जा रहा है तो यानी घुटने का कुछ हिस्से को बिल्कुल हटा करके दूसरे नई चीज़ें, नई घुटने लगा दिए जाएंगे, ऐसा है क्या? घुटने का किसी पार्ट को हटा के नया लगा दिया जाता है या उसमें कुछ और काम किया जाता है?
1: देखिए, इसमें घुटने की जो सतह होती है, जो आपस में सट रही है, वह सतह जो आपस में घर्षण खा रही है, उस हिस्से को ही सिर्फ बदला जाता है। लोग सोचते हैं घुटना बदलने का मतलब पूरा घुटना आपने बदल दिया, काट के हटा दिया तथा लोहे का लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर लगभग इतनी हड्डी को तथा सतह को बदला जाता है, घुटना नॉर्मली रहता है, ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं आती है।
0: और मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की परेशानी हो कि घुटना प्रत्यारोपण कराना आवश्यक हो जाए उनके लिए, तो सबसे पहला काम उनको क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले आप एक विशेषज्ञ से मिलें जो इस बीमारी को समझता है, जो इस बीमारी के इलाज को समझता है, जो आपको ये समझा सकता है कि आपके घुटने में कितने बदलाव आए हैं, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, किस तरह से घुटना बदला जाएगा, घुटने बदलने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और उनके पास एक अच्छी OT और अच्छा ट्रेंड स्टाफ हो
0: डॉक्टर प्रवीण, क्या जितने भी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, ये विषय तो उन्हीं का है हड्डी रोग विशेषज्ञ का, तो क्या कोई भी हड्डी रोग विशेषज्ञ ये घुटना प्रत्यारोपण पर जानकारी और इस पर विशेषज्ञता हासिल करता है, काम करता है, या इसके अलग विशेषज्ञ होते हैं?
1: नहीं, ये तो हड्डी रोग विशेषज्ञ का ही काम है। सारे लोग जो इसमें विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं वो इस काम को कर सकते हैं।

0: डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ हड्डियों का ऑपरेशन नहीं है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू मतलब आसपास की मांसपेशी, मांसपेशी की मजबूती, मांसपेशी के लचक, इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होते हैं, उन ट्रेनिंग को जरूर करना चाहिए। तथा इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि अच्छी OT, अच्छे स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ, अच्छे इम्प्लांट, इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, तो ये कोई भी हड्डी रोग विशेषज्ञ इस ऑपरेशन को कर सकता है।
1: हमारे परमंडल में जहाँ हम रहते हैं, तो हमारे आसपास के तमाम श्रोता जो हमारी बात को सुन रहे हैं, तो वे भी ये जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें आवश्यकता पड़े तो वे चाहेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो, तो उन्हें इन आसपास कहाँ कहाँ इसकी सुविधा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
0: पहले इस ऑपरेशन के लिए लोग बाहर के शहरों में जाते थे, जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, पर लास्ट कुछ सालों से ये सुविधा हमारे प्रमंडल में भी, हमारे प्रमंडल के आसपास जैसे रांची, पटना, जमशेदपुर, इन जगहों पर भी इनकी शुरुआत हो गई है, तो आवश्यकता पड़ने पर लोग इन जगहों पर जा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी उम्र तक के लोगों का ये घुटना प्रत्यारोपण किया जा सकता है?
0: उम्र में तो इसकी सीमा नहीं है, जब भी पेशेंट को ज़रूरत हो इसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है, पर हमारे प्रदेश, हमारे शहर, हमारे आसपास के लोगों में मुख्यतः ये 40 के बाद, 45 के बाद बुजुर्गों में ही, डिजनरेटिव कंडीशन जहाँ घुटने खराब हो रहे हैं उन कंडीशंस में ही किया जा रहा है।
1: तमाम श्रोता तो निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए ये ऑपरेशन अगर सपोज अगर 50 वर्ष की उम्र में अगर कराया उन्होंने, तो 50 वर्ष के बाद मतलब कितने दिन के बाद दोबारा इसकी आवश्यकता पड़ेगी? यानी अपने उम्र में, अपने जीवन में कितनी मर्तबा कोई भी व्यक्ति घुटना प्रत्यारोपण करा सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर अच्छे सुविधाओं के साथ, अच्छी तकनीक से इस ऑपरेशन को किया जाए, तो एवरेज लाइफ इसकी लगभग 18 से 25 साल के बीच में है। तो एक इंसान, अगर आपने पूछा, 50 साल की उम्र में इस ऑपरेशन को कराता है, तो लगभग इस घुटने की उम्र लगभग 20 से 25 साल आप पकड़िए, तो 70 से 75 साल की उम्र में हो सकता है कि उसको ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि ज़रूरत नहीं भी पड़े।
1: कुछ वैसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके होते हुए ये ऑपरेशन नहीं कराया जा सकता है।
0: हाँ, ये एक बहुत ही सामान्य ऑपरेशन है। हर ऑपरेशन की कुछ लिमिटेशंस है। अगर मरीज फिट नहीं हो, मरीज अपनी बीमारी को नहीं समझ सकता है, मरीज मानसिक तौर से मजबूत ना हो, मरीज में मांसपेशियों की कमजोरी हो, मरीज में नसों की कमजोरी हो, या मरीज ऑपरेशन के बाद हमारे बताए हुए फॉलोअप को नहीं फॉलो कर सकता है, तो ऐसे लोगों को हम इसकी सुविधा या इसके बारे में विचार नहीं करने को कहते हैं।
1: और शारीरिक कुछ पोजीशन, शारीरिक परिस्थितियां भी कुछ हैं जो उसको मतलब मना करती हैं या नहीं करने के लिए बाध्य करती हैं किसी भी डॉक्टर को या किसी मरीज को?
0: बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अगर मान लीजिए मरीज दिल से कमजोर है, उनका गुर्दा खराब है, उनके फेफड़े में ताकत नहीं है, जो बेहोशी के दौरान जिन पे जान का खतरा बना रहता है, ऐसे मरीजों का हम ऑपरेशन नहीं करते, ना सलाह देते हैं।
1: किसी व्यक्ति का घुटना प्रत्यारोपण के बाद
2: स्वास्थ्य चर्चा के तहत आप सुन रहे थे घुटना प्रत्यारोपण पर ली गई भेंट वार्ता डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ से। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए, समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में।

0: प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षासहयोगे नूतनक्षेत्राणाम् अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणुऊर्जाक्षेत्रे च परस्परसम्बन्धम् अत्यन्तं सुदृढं करिष्यतः।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: नवदेहल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे त्रयोदशाधिकैकसहस्रतोप्यधिकाः छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकम् अर्पयिष्यते। अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे चत्वारिंशदुत्तर द्विशत छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु पञ्च विधानसभासनेषु तथा नगाउं लोकसभासने च अद्य शान्तिपूर्णं मतदानं प्रचलति। निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामी शुक्रवासरे सम्पादयिष्यते, यस्तावत् तस्मिन्नेव दिने उद्घोषितं भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति हिमाचल प्रदेशस्य त्रिदिवसीय प्रवासे भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षित चिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपात प्रकटिता। विभागेन अनेन संसूचितं यत् आगामी दिनद्वये त्रये वा जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड लक्षद्वीप प्रांतेषु विद्युत्पात पुरस्सरं मेघ गर्जनं च संभाव्यते। यमन देशस्य मान्यता प्राप्तेन शासनेन हूती विद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्य अभियानं प्रारब्धम्। शासकीय बलैः रक्ताब्धि तटस्य मुख्य स्थानेषु अग्रगतिः प्राप्ता। अभियानस्यास्य मुख्यम् उद्देश्यं हूती नियन्त्रितानां भूभागानां पुनरधिग्रहणम् अस्ति। पञ्चस्पर्धानाम् अस्याः T20 श्रृङ्खलायाः प्रथमं सम्मुखीकरणम् अद्य लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे सायं सप्तवादनात् प्रारप्स्यते। अग्रिमः स्पर्धा तावत् रांची इंदौर हैदराबाद बेंगलुरु नगरेषु समायोजयिष्यन्ते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान जारी है। मतगणना 9 अक्टूबर को होगा।

0: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलांग के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलांग से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलांग का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000 वे एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

उससे बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज हम आपको सुनवाएंगे बांसुरी वादन पंडित के एस गोपाला कृष्णन से राग श्री और हरि कम्बोजी में। स्वर सरिता कार्यक्रम का समय होगा 7:45 पर। आज के कलाकार हैं स्वाति नाटेकर। सुबह के 8 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30

बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 12 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे यादों के महफिल। दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी समाचार रिले होंगे और 1:10 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। समाचारों के बाद 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 2 बजे हम फिर जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचारों के लिए। 2:15 पर हिंदी में समाचार भी आप सुनेंगे और 2:30 बजे पुनः मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे।

दोपहर 3 बजे विविध भारती के तहत आप सुनेंगे सखी सहेली, 4 बजे रांची केंद्रों से प्रादेशिक समाचार, 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम, शाम 5 बजे रांची केंद्रों से प्रादेशिक समाचार रैली होंगे, 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम होंगे, 5:25 पर हमारे स्टूडियो से आप पुनः सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, 5:35 पर युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम होगा युवाणी, चर्चा होगी स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य और स्टार्टअप इंडिया पर, शाम 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रैली होगी, 6:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसानवाणी, 6:30 पर खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे, शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रैली होंगे, 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आज कल, 7:15 पर सुर संध्या कार्यक्रम होगा जिसके तहत आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 7:45 पर काव्य पाठ आप सुनेंगे खुला आकाश कार्यक्रम के तहत, रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से, 8:30 बजे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा, रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू समाचार रिले होंगे दिल्ली केंद्र से, 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे, रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, रात्रि 10:30 बजे एक ही फिल्म के कार्यक्रम आप सुनेंगे एक रंग, रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण के तहत समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग का। आइए सुनते हैं बांसुरी वादन पंडित के एस गोपाला कृष्णन से राग श्री में।

अभी आप सुन रहे थे स्वर से टकर स्वाति नाटेकर को। इसके साथ ही आज का सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 बजे राष्ट्रीय केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आइए, समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पूजापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजयम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजयम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल विजयम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माय ओपिनियन विजयम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड or Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
2: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजयम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुनरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: गालिम लोशन, गालिम लोशन, गालिम लोशन, गालिम लोशन, वो है गालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग गालिम लोशन।

समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित

0: की ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Polling begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of 8 candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity. Reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nogaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuran Takam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Thattan Chowri assembly seat and Rajinagar and Nondigram assembly seats in West Bengal. More from a Kolkata correspondent.
4: The by-election in Nondigram was necessitated after Chief Minister Shubhay Dori, who won both Nondigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nondigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Rajinagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kobir retained Nauda and resigned from Rajinagar. In Nondigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Harshirani Roth and Congress candidate Milon Pradhan. The Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milon Pradhan. Prodhan. In Reginapur, 14 candidates are contesting.

0: According to Meteorological Department, J&K will witness thunderstorms, gusty winds and scattered rainfall in the next few days. Met Department advised people to ensure safe storage of apples and paddy in view of the expected weather conditions. The Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over parts of Kerala, Mahe, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. IMD has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Abhishek. India-European Free Trade Association, EFTA pact, set to boost trade and investment, says Prime Minister, leads the statesman. Make predators fear the law, Supreme Court pushes Delhi police on safety of women in capital, reports the Pioneer. The Times of India, citing a survey by the National Statistics Office, NSO, says that only 15% going to work use public transport like buses, trains, trams or auto rickshaws. In football, after Brazil, India face another South American giant in Uruguay friendly at the Salt Lake Stadium, reports the Indian Express. And finally, Nobel for Medicine spotlights research on interplay between brain and light, states the Economic Times. German-US scientists win honor in medicine for using light to unravel secrets of the brain, writes the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Sarabjit. In Samoa news, the Indian Embassy in Bucharest has informed that all three Indian nationals aboard the commercial vessel MV Royad Mamadov are safe. The vessel came under attack in the Black Sea, leading to reported deaths of two foreign nationals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Polling begins for by-elections to five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of eight candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a three-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the five-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. 8:30 हुए हैं. थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार.
3: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ
4: बहु पेट से है ना,
3: तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी.
4: ये तो खुशी की बात है. गर्भ में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहु की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना.
3: मैंने बहु का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है. उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ.
5: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जाँच कराएं.
3: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य ले.
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड द्वारा जनहित में जारी.
7: माँ बनना कोई बीमारी है क्या? तो 100 दिन तक रोज ही दवा लूँ.
8: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है.
9: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से.
8: दो कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या, वो भी तो दो दो जान संभाल रही है. बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा. चांस क्यों लेना.
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा. पहले मुख्य समाचार. राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 6 जिलों के साथ ही जल जीवन मिशन की समीक्षा. लापरवाही बरतने वालों ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश. रांची रिम्स की सेवा नियमावली और फैकल्टी मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी. अपर मुख्य सचिव ने कहा खोले जाएंगे 10 नए विभाग. जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच की सरकार को

0: दामनी कल हाईकोर्ट सुनवाई में सीआईडी रिपोर्ट मजबूती से पेश न होने पर 18 अक्टूबर से उग्र आंदोलन की घोषणा। मॉनसून की विदाई के बीच आज रांची, धनबाद और गुमला सहित 14 जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री आज भी जारी, पहले दिन 8000 से ज्यादा बिकी टिकटें। और अब समाचार विस्तार से। लातेहार के बेतला में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 6 जिलों की जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने हर घर नल से जल पहुंचाने के कार्यों में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। ठेकेदारों और अभियंताओं को चेतावनी देते हुए विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने लापरवाही बरतने वाले संवेदकों को तुरंत ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा पुनर्गठित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति में चतरा सांसद कालीचरण सिंह को दोबारा सदस्य बनाया गया है। सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली इस 31 सदस्यीय समिति में राज्य के सांसद सुखदेव भगत, महुआ माझी और प्रदीप वर्मा को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। रांची के रिम्स में फैकल्टी मैनेजमेंट, प्रशासनिक कामकाज और सेवा नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में रिम्स की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल की व्यवस्था और नियमावली में सुधार को लेकर अपर मुख्य सचिव ने विस्तृत जानकारी दी।
1: यूजी की सीट है 250 हो गया है, उसके लिए भी रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है। पीजी की जो सीट है वो 100 बढ़ाना है, 175 से 275 करना है। और जो सुपर स्पेशलाइजेशन का पोस्ट है वो अभी 9 सीट है, इसको हम लोग मिनिमम 100 करने के लिए कहे हैं। उसके लिए पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, प्लस नर्सेज की संख्या कम है वो बढ़ाने की बात हुई थी। साथ ही 10 या 11 डिपार्टमेंट खोले जाने हैं नए नए, जो यहाँ पे नहीं चल रहे उनको भी खोला जाना है।
0: राज्यों में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर जेपीएससी रिफॉर्म मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि यदि सरकार ने 7 अक्टूबर की हाईकोर्ट की सुनवाई में सीआईडी जांच रिपोर्ट और कैबिनेट नोट मजबूती से पेश नहीं किया तो छात्र 18 अक्टूबर से दोबारा उग्र आंदोलन शुरू करेंगे।
2: आगामी 7 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में अपनी भी एग्जाम को राज्य सरकार ने रद्द किया है, उन तमाम एग्जाम को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। और पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट माननीय न्यायालय में जमा किया है, लेकिन माननीय न्यायालय का ये मांग है कि आप 17 अगस्त को जो डिसीजन लिए तो आपको डिसीजन किन परिस्थितियों में लिए। आपको सीआईडी ने अपना इन्वेस्टिगेशन नोट जो दिया उस नोट को आपको माननीय न्यायालय में जमा करना होगा।
0: रांची जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि भेज दी गई है। प्रथम चरण में 1,86,000 से अधिक लाभुकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रशासन ने बाकी लाभुकों से जल्द बैंक खातों में आधार सीडिंग कराने की अपील की है। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर केंद्रीय पिछड़ी जाति संघर्ष समिति ने आज रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में बंद का आह्वान किया है। बंद के मद्देनजर प्रशासन ने सभी 5 जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बेटियों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ बेटियों से मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि देश का उज्जवल भविष्य बेटियों के सपने, शिक्षा और उनके सशक्तिकरण में ही बसता है।
3: आज हमारी बेटियां जो देश की भविष्य है उनके लिए आप बेहतर ढंग से कैसे सके आप सब लोग भी क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आप अच्छा से शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं, तो आप पढ़ाई करें, पढ़ाई

0: के साथ साथ जो विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को भी आगे बढ़ाने में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने प्रमुख पूजा पंडालों और प्रस्तावित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने भीड़ नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।
2: अभी तैयारियां चल रहा है, पहले तो हम लोग पार्किंग व्यवस्था के बारे में देखे थे ताकि लोगों को सुविधा हो और मैक्सिमम गाड़ी लगाया जा सके, तो उसमें बैरिकेडिंग से लेके जो लाइटिंग की व्यवस्था है उसके साथ में हम लोग जो नगर निगम का जो ऑफिसर्स है उनके साथ में हम लोग संयुक्त इसका निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग का यही टारगेट रहेगा कि जो लोगों को कोई परेशानी ना हो और सब मैक्सिमम लोगों को काफी आसानी से ये फेस्टिवल है वो सब सब इंजॉय कर रहे हैं।
1: उधर खूंटी जिले में भी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले के उपायुक्त जावेद हुसैन और पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने संयुक्त रूप से विभिन्न पंडालों और रावण दहन स्थल का भौतिक सत्यापन किया। तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने बताया कि सभी पूजा समितियों को अग्निशमन व्यवस्था, पुख्ता बैरिकेडिंग और आपातकालीन निकास द्वार दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।
3: और पर्व त्योहारों से रिलेटेड आज जिला प्रशासन पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस प्रशासन की पूरी टीम ने निरीक्षण किया। कुछ पंडालों का हम लोगों के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। लोगों से को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि टाइमली अपना व्यवस्थित तरीके से जो भी विसर्जन वगैरह का कार्यक्रम होता है वो सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ नगर पंचायत की भी टीम थी और हमारे अंचल की भी टीम थी, उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप भी ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी प्लानिंग कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो।
1: राज्य में मौसम की विदाई के बीच मौसम विभाग ने आज रांची, धनबाद और गुमला समेत राज्य के 14 प्रमुख जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में आज आसमान में बादल छाए रहने, तेज आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे T20 मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। मुकाबले की ऑफलाइन टिकटों की बिक्री आज भी जारी रहेगी। टिकट पाने के लिए स्टेडियम के काउंटरों पर सुबह से ही खेल प्रेमियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि कल पहले दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन 8,000 से अधिक टिकटों की बिक्री हुई। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के टिकटों की बिक्री की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहले दिन 8,033 टिकट बिके, रांची में मैच के दिन बारिश की संभावना। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड गवर्नर की बेटी श्रुति भाजपा से यूपी में राज्यसभा प्रत्याशी। दैनिक जागरण ने लिखा है, ज्ञानेश को निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। प्रभात खबर लिखता है, राज्य में 11,79,000 दावे और घर घर सत्यापन बाकी, ये 8 दिन में संभव नहीं, सीईओ ने आयोग से मांगा और समय। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 6 जिलों के साथ की जल जीवन मिशन की समीक्षा। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश। रांची रिम्स की सेवा नियमावली और फैकल्टी मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी। अपर मुख्य सचिव ने कहा, खोले जाएंगे 10 नए विभाग। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच की सरकार को चेतावनी। कल हाईकोर्ट सुनवाई में सीआईडी रिपोर्ट मजबूती से पेश न होने पर 18 अक्टूबर से उग्र आंदोलन की घोषणा। मॉनसून की विदाई के बीच आज रांची, धनबाद और गुमला सहित 14 जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री आज भी जारी, पहले दिन 8,000 से ज्यादा बिकी टिकटें। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
3: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करो।
2: अच्छा,
3: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियां अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
7: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
6: हरी सब्जी, शाकाहारी भोजन, ये है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत।
7: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन खिलाएं।
6: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: 49.5 KHz और FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
1: समाचारों के बाद स्वागत है आपका आकाशवाणी डाल्टनगंज के कार्यक्रमों में। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। आज इस कार्यक्रम को हमने समर्पित किया है प्रसिद्ध अभिनेता विनोद खन्ना साहब पर। जी हां, आज है विनोद खन्ना का जन्मदिन। 6 अक्टूबर 1946 को जन्मे थे। जयंती पर हम सादर नमन करते हैं उन्हें। 1966 में फिल्म मन का मीत से विनोद खन्ना ने अपना अभिनय करियर शुरू किया। हिंदी सिनेमा में नायक और खलनायक दोनों भूमिकाओं में विशिष्ट पहचान बनाई। लगभग 5 दशक के फिल्मी सफर में अनेक यादगार फिल्म भूमिकाएं उन्होंने निभाई। गुरदासपुर से 4 बार लोकसभा सांसद चुने गए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन तथा विदेश राज्य मंत्री रहे। 2017 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किए गए। आज समर्पित करते हैं तमाम गीतों को विनोद खन्ना साहब को।

मेरे अपने मेरा गांव मेरा देश और अचानक जैसी फिल्मों से विनोद खन्ना को जबरदस्त पहचान मिली। 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में वे शीर्ष अभिनेताओं में शामिल हो गए और अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर दी। अमर अकबर अंथोनी और कुर्बानी उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं। कुर्बानी फिल्म का गीत अभी हम आपको सुना रहे थे। करियर के सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 1982 में वे आध्यात्मिक गुरु के शरण में चले गए और फिल्मों से 5 साल के लिए उन्होंने ब्रेक

1987 में फिल्म इंसाफ में उन्होंने वापसी की और बाद के वर्षों में दबंग और वांटेड जैसी फिल्मों में पिता का शानदार रोल निभाया। विनोद खन्ना साहब ने अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिले तथा 2018 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। विनोद खन्ना ने 1997 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। वे पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1998 से 2009 और फिर 14 से 2017 तक लोकसभा के सांसद रहे।

0: गीत गुंजन कार्यक्रम के तहत हम सादर नमन कर रहे थे विनोद खन्ना साहब को, जिनकी है आज जयंती। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। समय हो चुका है जोहार पलामू कार्यक्रम का।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार और जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं आज के सुविचार से। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसका फल सही समय पर जरूर मिलता है। जी हाँ, आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती, इसलिए आप धैर्यपूर्वक अपनी सफलता का इंतजार करें और लगातार मेहनत करते रहें, अपना कर्म करते रहें। बात करें मौसम की, तो अधिकतम तापमान आज 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल यानी कि 7 अक्टूबर को अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और मौसम की इस जानकारी के बाद कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं।

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। जलापूर्ति योजनाओं में गुणवत्ता से समझौता नहीं, लापरवाह संवेदक होंगे ब्लैकलिस्ट, यह कहना है मंत्री महोदय का। पेयजल एवं स्वच्छता उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को बेतला नेशनल पार्क के सभागार में जल जीवन मिशन JJM के तहत संचालित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लातेहार, गढ़वा, पलामू, गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा जिलों में संचालित विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं की जिलावार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित जिलों के अधिकारियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति, पूर्ण एवं अपूर्ण योजनाओं, निर्माण कार्य की प्रगति, पेयजलापूर्ति की स्थिति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी अन्य जानकारी मंत्री के समक्ष रखी। समीक्षा के दौरान योगेंद्र प्रसाद ने योजनाओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की का समझौता नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घर तक नल के माध्यम से सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है। मंत्री महोदय ने कहा कि योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करते हुए ग्रामीणों को शीघ्र ही पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट ने पर्यटन सचिव से मांगा DPR व फंडिंग पर शपथ पत्र। रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्वार का मामला अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई। रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्वार से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। संजीव कुमार सिंह की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पर्यटन विभाग के सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने पर यह बताने का निर्देश दिया कि मंदिर के पुनरुद्वार के लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और प्रस्तावित योजना के लिए राशि किस मद से उपलब्ध कर

दी जाएगी। दवा उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त, एके सिंह ने कहा सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी नहीं हो। दवा एवं चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद तथा अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की हुई समीक्षा, सभी सदर अनुमंडल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन औषधि केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए। राज्य में मरीजों को सस्ती गुणवत्तापूर्ण और आवश्यक दवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सोमवार को राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों की प्रत्येक बिल्डिंग में जन औषधि केंद्र एवं अमृत फार्मेसी सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता अनुसार जन औषधि केंद्र खोलने का भी निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को दवाओं एवं चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद तथा अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। उपायुक्त की पहल से जहाजी नदी से बड़का आहर को जोड़ने की कवायद, किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने की जगी उम्मीद। पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड के राजस्व ग्राम गोलना में जहाजी नदी के पानी को बड़का आहर तक पहुंचाने की संभावनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर DRDA के AE आनंद प्रकाश और JE जनेश कुमार ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर नदी और आहर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दोनों जल स्रोतों के बीच पानी पहुंचाने की तकनीकी संभावनाओं का जायजा लिया। बताया गया कि क्षेत्र की उपजाऊ कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा सिंचाई सुविधा के अभाव में वर्षा पर आधारित खेती पर निर्भर है। अधिकारियों के अनुसार तकनीकी रूप से संभव होने पर जहाजी नदी को बड़का आहर से जोड़कर किसानों को सिंचाई का स्थायी समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा सकती है। वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा। NPU में पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कौटिल्य प्रशासनिक भवन परिसर में सोमवार को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड के अंतर्गत वन प्रमंडल मेदिनीनगर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना NSS इकाई के संयुक्त तत्वाधान में पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यालयों के NSE स्वयंसेवकों के साथ अन्य नियमित छात्र छात्राओं ने भाग लिया। YSN कॉलेज मेदिनीनगर, GLA कॉलेज मेदिनीनगर, AK सिंह कॉलेज जपला और संत जेवियर कॉलेज महुआडाड़ के NSS स्वयंसेवकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। निबंध प्रतियोगिता के लिए वन्य जीव संरक्षण, प्रकृति के संतुलन की कुंजी, जल संरक्षण, जीवन प्रकृति और भविष्य की सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण, संतुलित प्रगति की आवश्यकता, वन संरक्षण और वनीकरण, हरित भविष्य की ओर तथा जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर उसका प्रभाव जैसे विषय रखे गए। पेंटिंग प्रतियोगिता में वन्य जीव बचाओ, प्रकृति बचाओ, मानव वन्य जीव अस्तित्व, संघर्ष से सद्भाव तक, जल जंगल और जीवन का संरक्षण आदि विषयों पर एक से बढ़कर एक पेंटिंग विद्यार्थियों ने बनाई। प्रतियोगिता में कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई। इस अवसर पर IFCVP लावा कुमार की उपस्थिति रही। शहर की जर्जर सड़कों की दुर्गा पूजा से पहले मरम्मत की मांग। 30 सितंबर को रांची जिला स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन देकर यहाँ के राजद नेता ने मेदिनीनगर शहर की जर्जर सड़कों की दुर्गा पूजा से पहले मरम्मत कराने की मांग की है। आवेदन में उन्होंने थाना मोड़ से पंचमुहान चौक, सब्जी बाजार, हनुमान मंदिर से बलिसाव चौक तथा लादीगढ़ कॉम्प्लेक्स से कनीराम स्कूल तक सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है। दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है और जगह जगह पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन ऐसे में हमारी अपील होगी। आकाशवाणी परिवार आपसे अपील करता है कि आप दुर्गा पूजा पंडालों के भ्रमण के दौरान भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, ओवर स्पीड और ओवरलोड नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गांव से भी श्रद्धालु आते हैं पंडालों के दर्शन के लिए, और ऐसे में एक साथ अधिक से अधिक लोगों को अपनी बाइक पर या स्कूटी पर बिठाने की कोशिश करते हैं। कई बार ट्रिपल लोड, कई बार चार लोग भी स्कूटी या बाइक पर देखे जाते हैं। तो कृपया आप ऐसा न करें, आप सुरक्षित रहेंगे तो अगले साल फिर आप पंडालों के दर्शन करेंगे और अपना जीवन भरपूर जी पाएंगे। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ओवरलोड बिल्कुल न करें, ओवर स्पीड और गलत ढंग से ओवरटेक न करें, और नशे की स्थिति में तो गाड़ी

बिल्कुल ही नहीं चलानी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप सड़कों पर उतरते हैं तो आप अपना तो नुकसान करते ही करते हैं, आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती, जो बेवजह सड़कों पर

खुशहाली से मनाएंगे तो ही आपका जीवन सुरक्षित होगा और आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। और हाँ, फैशन के चक्कर में या किसी और भी कारण से हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलें। हेलमेट जरूर पहनकर ही आप सड़कों पर आएं और पंडालों में दर्शन के दौरान भी अपने हेलमेट को सुरक्षित रखें अपने साथ। और अगर आप फिर बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो आप हेलमेट पहनकर ही चलाएं। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तभी आप पूजा का त्यौहार का आनंद सब परिवार उठा पाएंगे। और इन्हीं बातों के बाद कार्यक्रम का गीत आइए सुनवाते हैं, अगला गीत आपको।

और अब बात करें आज के इतिहास की। आज के इतिहास के पन्ने पलटने की बारी है। आज है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर का इतिहास देश और दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का गवाह रहा है, जिनमें भारतीय दंड संहिता IPC का पारित होना और अन्य महान वैज्ञानिकों का जन्म शामिल है। 1860-62 में भारत में भारतीय दंड संहिता IPC को कानूनी रूप से पारित किया गया था। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना का विलय कर किया, जिससे कि बालकन क्षेत्र में तनाव भी बढ़ा था। 1970 में भारत में निर्मित पहला MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 1973 में मिस्र और सीरिया द्वारा इजराइल के खिलाफ योम की पूर्व युद्ध की शुरुआत की। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की एक सैन्य परेड के दौरान हत्या की गई। पंजाब में बढ़ते राजनीतिक और धार्मिक तनाव को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया 1983 में। 1893 में महान खगोल भौतिकविद और वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का जन्म हुआ था आज ही की तारीख को, जिन्होंने थर्मल आयनीकरण समीकरण प्रतिपादित किया था। 1946 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और राजनीतिज्ञ विनोद खन्ना का जन्म हुआ था। तारीख थी 6 अक्टूबर। तो 6 अक्टूबर को इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं, इनकी हम बात कर रहे थे। आज ही के दिन सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया था। गुयाना ने 1980 में संविधान को आज ही की तारीख को अंगीकार किया था। 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 1987 में फिजी एक गणराज्य के रूप में घोषित हुआ था। तारीख थी 6 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति रक्षकों को बल प्रयोग का अधिकार दिया था सन 2006 में आज ही की तारीख को। वैश्विक मंदी के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नकद सुरक्षित अनुपात CRR में 0.5% की कटौती का फैसला किया था 2008 में 6 अक्टूबर को। ग्रैंड ओल्ड मैन बाबा खड़क सिंह पंजाब के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, 1963 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। हरियाणा के कुशल राजनीतिज्ञ तथा 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भजन लाल का जन्म 1930 में आज ही के दिन हुआ था। ख्याति प्राप्त इस्लामी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी हुसैन अहमद मदनी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा में छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार अरविंद त्रिवेदी का निधन 6 अक्टूबर को हुआ था 2021 में, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में रावण का रोल अदा किया था। बाबा साहब भोसले राजनीतिज्ञ और महाराष्ट्र के 9वें मुख्यमंत्री का आज ही की तारीख को 2007 में निधन हुआ था। गुरु हर राय, जो कि सिखों के 7वें गुरु थे, 1661 में आज ही की तारीख को उनका निधन हुआ था। और सप्ताह मनाने की अगर बात हम करें तो वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है अपने वनों की रक्षा करना। तो इतिहास की इस जानकारी के बाद कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं।

बात करें सेहत की, क्योंकि जब आप होंगे सेहतमंद तभी हमारा और आपका साथ बना रहेगा। बात करते हैं आज मोटे अनाज रागी की। और अभी जितिया का समय जस्ट बीता है, तो आपने देखा होगा कि बाज़ार में रागी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध था। रागी के आटे का प्रयोग अगर हम करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि रागी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस से भी हमें बचाता है, वजन को भी नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद डाइट्री फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे कि भूख हमें कम लगती है और इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI कम होता है, जिससे कि यह रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाता है और नियंत्रित रखता है। खून की कमी को भी यह दूर करता है। यह आयरन का एक अच्छा स्रोत है जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाकर एनीमिया से बचाता है। पाचन तंत्र को भी सुधारता है। रागी उच्च फाइबर पाचन प्रक्रिया को बेहतर करता है और कब्ज से हमें राहत दिलाता है। ग्लूटेन फ्री कहा जाता है रागी को। यह प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री है।

0: जिसे ग्लूटेन असहिष्णुता वाले लोग आसानी से खा सकते हैं, यानी जिन्हें ग्लूटेन नहीं सुपाच्य होता है, जिनके लिए उनके लिए भी रागी काफ़ी उपयोगी है। कई पकवान इससे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि रागी और चावल को बराबर मात्रा में मिलाकर स्वादिष्ट और पौष्टिक रागी का डोसा या इडली या उपमा भी आप बना सकते हैं। पिसे हुए रागी को ब्रेड और मुफ्सिन्स व्यंजन में भी मिलाया जा सकता है। रागी का हलवा और स्वादिष्ट नमकीन भी आप बना सकते हैं। भुने हुए रागी को पिसी हुई चीनी, इलायची और घी के साथ मिलाकर इसका लड्डू बनाया जा सकता है। हड्डियों के विकास के लिए यह बेहद फायदेमंद होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है, रागी में अन्य अनाज के मुकाबले उच्च मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की गोली लेने की बजाय बढ़ते बच्चों के आहार में रागी देना बहुत ही अच्छा तरीका है इससे लाभ उठाने का। साथ ही एनीमिया दूर करने में भी रागी काफ़ी सफल है। रागी में आयरन की मात्रा उचित रूप से पाई जाती है। अंकुरित रागी खाने के फायदे और भी अधिक होते हैं, क्योंकि जब रागी अंकुरित हो जाता है तो इसमें विटामिन सी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे खाने में पाए जाने वाले आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रागी बहुत ही फायदेमंद है। फाइबर में भी काफ़ी अधिक इसमें पाया जाता है। सफ़ेद चावल की तुलना में रागी में उच्च मात्रा में फाइबर होता है। इससे रागी पाचन में सहायता करता है और ज़्यादा खाना खाने से भी हमें बचाता है और हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। तो आप इसका प्रयोग करें, डायबिटीज़ से भी बचें, उच्च रक्तचाप से भी आपको बचाता है। ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल बहुत ही आम हो गई है। रोग से बचने के लिए आप रागी की रोटी का अगर सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो रागी का उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसे भी मोटे अनाज पर आजकल काफ़ी जोर दिया जा रहा है और रागी का अगर आप उपयोग करते हैं तो कब्ज जैसी समस्या से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, स्वास्थ्य संबंधी इन्हीं टिप्स के साथ आज के जोहार पलामू कार्यक्रम से हमें अनुमति दी। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति शर्मिला वर्मा की, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का और प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में,
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
3: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
3: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
3: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
3: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
2: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
3: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ, बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
2: जी।
3: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है, धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखण्ड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
2: पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
2: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
3: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
2: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है, और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
3: तो चलिए श्रोताओं, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ, नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
2: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
3: श्रोताओं, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
2: जी।
3: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
2: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
3: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ, लेकिन श्रोताओं, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
2: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
3: और इसी क्रम में श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
2: क्या हुआ था अजीत जी?
3: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे
2: जी।
3: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
2: जी, क्या छपा था?
3: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
2: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी।
3: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
2: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
3: आश्रोताओं, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
2: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
3: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
2: जी
3: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
2: वो कौन सी अजीत जी?
3: वो ये है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे

0: मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
1: जी जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
0: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
1: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके, और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
1: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं, बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, और हमारा सवाल है,
1: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
0: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है,
1: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
0: जी
1: तो श्रोताओ, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है।

0: कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
1: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
2: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
1: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
2: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
1: क्या कहा?
2: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
1: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
0: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
2: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
3: नहीं, अरे ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
4: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
2: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
4: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
0: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
2: अपने मित्र को देखो।
1: खोल दो अपनी आंखें। भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
6: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
7: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
5: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग 1।
8: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
9: त्रेता युग में आरुणी उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
10: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन
11: कहोड़,

0: मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
1: जो आज्ञा आचार्य।
0: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रख।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थी, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।

0: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
2: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़।
3: ओह पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
2: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
4: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।

0: कौन विषय होगा?
1: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
2: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
3: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
1: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
4: श्वेत केतु,
5: अष्टावक्र,
4: मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
5: हाँ,
4: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
5: कब चलना है?
4: बस अभी तुरंत।
1: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
6: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
4: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं। कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
2: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
3: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
7: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
4: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूँ।
3: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
4: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
1: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
3: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
4: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
3: अत्यंत सुंदर।
2: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
3: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
4: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
8: मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो।
1: दरबार में बैठे सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे।

0: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
1: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा।
2: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार आप क्यों हंस रहे हैं?
0: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है, परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
2: हे ब्राह्मण कुमार,
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2रे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में के योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट

शिप एफएसएस एक का जलावतरण करेंगे। फ्लीट सपोर्ट शिप एफएसएस 5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 148 अंक बढ़कर 72,531 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 54 अंक की वृद्धि के साथ 22,610 पर पहुंचा। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में भारत का सामना आज उरुग्वे से होगा। मुकाबला सॉल्ट लेक के युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Piyush Goyal met U.S. business leaders in New York and discussed opportunities to further deepen partnership and investments in India. Mr. Goyal met President and COO of Blackstone, Jonathan Gray, Chairman and CEO of Neuberger Berman, George Walker, and President and CEO of the Estee Lauder Companies, Stéphane de la Ferrière, yesterday. India has voiced support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirming its commitment to the welfare of the Afghan people at the 8th Moscow format consultations on Afghanistan hosted by Russia in Moscow. Indian delegation was led by Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Dr. M. Suresh Kumar. Representatives from Russia, Iran, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan attended the forum. Belarus and Egypt participated as guests. Yemen's internationally recognized government has launched a major military offensive against the Houthis, with government forces claiming advances around the key strategic posts along the Red Sea coast. The offensive, formally named Operation Dawn of Yemen by President of the Presidential Leadership Council Rashid al-Alami, aims to retake territory held by the Houthis, restore state institutions and regain control of the capital Sana'a, which the group has controlled since 2014. In men's cricket, the first T20 international of the five-match series between India and West Indies to be held in Lucknow today. The match will start at 7 p.m. IST. In football, India and Uruguay will face each other in a FIFA international friendly match at the Yuva Bharti Kriyagan in Salt Lake in Kolkata today. Domestic equity benchmark indices opened higher today amid positive global cues. Sensex rose nearly 148 points to reach 72,531, while Nifty climbed 54 points. And that is the end of this news bulletin.
1: Video wave 366.3 meter. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 10:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद.
2: ये एक है, फिर चिड़चिड़ापन जैसे जहाँ आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई.
3: हाँ.
2: या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है.
3: अच्छा जी.
2: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमेटर सिम्टम्स हैं. फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आंखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है. तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है. जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है, वो लेडीज काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो हार्ट को काफी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है. हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज को पीरियड्स मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है.
3: अरे
2: जी.
3: अच्छा
2: जी. तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, राइट. तो ये हार्ट में हो सकता है. बोन्स को स्ट्रांग रखता है, यानी बोन्स में जो कैल्शियम डेपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है. तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है. आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स, अब जो सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको, कि मसल मास कम हो गया है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है. तो ये भी एक बड़ी समस्या से आए, यानी जो अपने सीनियर्स हैं जो अगर ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, मसल

0: मेनोपॉज के बाद, और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद।
1: अच्छा,
0: जी
1: ध्यान रखना होगा
0: जी,
1: इन बातों का,
0: डेफिनेटली
1: हमें
0: डेफिनेटली
1: ध्यान रखना होगा।
0: जी
1: बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हर महीने माहवारी आना महिला को बहुत परेशान कर देता है, और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है, तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रही हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती है, आप ध्यान नहीं रखा
0: जी,
1: तो
0: जी
1: तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही हैं, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता
0: जी,
1: है,
0: जी, जी,
1: तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे, जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है, या
0: जी,
1: उसके
0: जी,
1: आपने कहा कि शरीर में आने वाले जो बदलाव हैं, आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे?
0: तो अगर ये सिम्टम्स, मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम ईस्ट्रोजेंस दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गायनेक, गायनेक ही दे सकते हैं, आप अपने आप से ना ले, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए। बट ज्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग, ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है, और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत ईजिली कर लेती हैं। और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट, मतलब इस चीज का इंपॉर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं, कि अगर ये आप रेगुलरली, जो वर्किंग वुमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, डाइट, इस पे अगर ध्यान दें, तो काफी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन।
1: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम कि थेरेपी होती भी है कि नहीं। तो डॉक्टर साहिबा, जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है, अब हम फ्री हो गए हैं, किसी भी तरह का मासिक धर्म से हम अपने आप को मुक्त पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद, महीनों बाद, तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई है?
0: डेफिनेटली ये काफी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, एक साल, दो साल, तीन साल हो गए, और सडनली चार साल के बाद पीरियड आने लगा है, तो ये आम बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो जस्ट, या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है, तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सोल्यूशन, सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो, या बायोप्सी करना चाहे, तो डेफिनेटली करना चाहिए।
1: जी तो चलिए गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं।
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए।
1: क्या बात है लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई हैं। गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, उमराव जैन फिल्म से ये गाना,
0: आशा भोसले
1: जी, आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ़ शी इज़ डिमांड कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स है, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं तो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मींस आर्टिफिशियली हम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी देते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि ईस्ट्रोजन जब ज्यादा होता है, तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है, तो दे हैव, तो जब अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, या प्लेन ईस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, क्रीम्स, पैचेस, या विथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो गायनेक जैसे अपने हिसाब से डिसाइड करेगा।
0: हाँ, डॉक्टर अपने हिसाब से तय करेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।
1: जी, जी।
0: तो ये कितना लंबा चलता होगा, ये थेरेपी कितने समय तक चलती होगी?
1: मतलब सेफली 2-3 साल तक तो ले सकते हैं, बट अब्रॉड तो विमेन बहुत लंबे टाइम तक भी लेते हैं, 8-10 साल भी ले सकती हैं। जी,
0: तो क्या एक आम महिला इसके खर्च को वहन कर सकती है?
1: यस, देखें, मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
0: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें, जो बहुत मेहनत करती हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी है, क्योंकि उन्हें तो इस
1: नहीं आए, जरूरी नहीं।

0: है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती है।
1: होती
0: जी
1: है, मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा इलाज
0: यस
1: होती
0: यस
1: है।
0: और यस और अब मेहनत है उनकी, जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमोसफियर,
1: और
0: जो
1: देसी
0: फैमिली,
1: खान पान जो
0: देसी
1: उनका,
0: खान पान, देसी हवा, ऑल दैट। या
1: ये सभी मिलकर जो है
0: जी
1: उसे
0: जी
1: मजबूत बना
0: जी
1: देते
0: जी
1: हैं। डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मानसिक तौर पर,
0: जी
1: शारीरिक
0: जी
1: तौर पर।
0: जी जी
1: तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
0: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं। ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी।
0: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके। और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है, मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुली ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होनी
1: नहीं, जी।
0: चाहिए। और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे का देखभाल 24/7, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना। तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नजरअंदाज ना करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
1: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं
0: जी
1: कि महिला डिप्रेशन में भी जा सकती
0: जी
1: है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और इसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर
0: जी
1: बात को वहीं खत्म कर
0: जी
1: देते हैं
0: जी जी
1: कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है,
0: जी
1: या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है,
0: जी
1: बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं,
0: जी
1: लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी
0: यस
1: हो सकते
0: यस
1: हैं, इसके
0: यस
1: बारे में हमें सोचना
0: यस
1: होगा।
0: एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात। और महिला को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
0: हाँ, वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज में भी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि अंडे की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं। बट अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: अच्छा।
0: एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी हद तक सिटीज में है,
1: जी
0: जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, बट सिटीज में विमेन कहाँ धूप में जाती है, इनफैक्ट वो खुद को
1: और
0: प्रोटेक्ट ही
1: खासतौर
0: करती
1: से
0: है।
1: महानगरीय व्यवस्था में तो
0: यस
1: और भी ज्यादा
0: जी,
1: दिक्कत है।
0: तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली, तो ये दो तो जरूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है। तो अगर टेस्ट करना है रेगुलरली, तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं, थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, हाँ, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड है, अगर मम्मी को थायराइड है, या आप PCO हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी ही थायराइड के, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना चाहिए।
1: करवाना चाहिए,
0: जी
1: यानी हमें हर 6 महीने में या साल भर में
0: साल भर में इज फाइन।
1: रूटीन चेकअप
0: जी
1: होना चाहिए।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हो। ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
0: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवा अवस्था में हो, या आप मेनोपॉजल हो, या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे, किशोर अवस्था में भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना, अपनी डाइट
1: जी
0: पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें।

0: होममेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं, काफी मदर्स मुझे कंप्लेन करती हैं कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है, तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, वो जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी, काफी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फाइबर की
1: हाँ
0: डेफिशिएंसी होने ही वाली है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ हैं।
1: हाँ वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे,
0: जी
1: और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं थे,
0: यस
1: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे,
0: यस
1: घर
0: और
1: के
0: फिर
1: घर
0: सो जाते
1: फिर
0: थे थक
1: सो
0: के।
1: जाते,
0: यस
1: चिंता फिक्र नहीं थी,
0: जी
1: पढ़ाई का इतना बोझ
0: बोझ
1: नहीं
0: नहीं
1: होता
0: था।
1: था,
0: जी जी
1: और घर का बना हुआ खाना ना,
0: जी
1: उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं थे
0: जी
1: कि,
0: जी बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन
0: यस
1: गई है,
0: जी
1: माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे
0: जी
1: को खिला दिया जाए, ये सभी
0: जी
1: कारण भी
0: जी
1: मिलजुल
0: यस
1: कर इन चीजों को दे रहे
0: यस तो
1: हैं।
0: ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है, तो
1: जी
0: हम सबको हर घर में योग होना बहुत ही
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात, आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी
0: बहुत
1: है।
0: काफी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज को। इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, और खुद भी वो फॉलो करना है। एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहाँ 1 घंटा निकल गया पता भी नहीं चलता है। तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा।
1: बिल्कुल आपने कहा, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे, और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी।
0: जी
1: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का, और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं। कौन सा गीत सुनेंगी आप?
0: देयर आर सो मेनी कि तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम।
1: ये गाना सुनना चाहती हैं, फिल्म
0: जी
1: जवानी से ये गाना है और आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। और लेकिन आम महिला आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके।
0: जी।
1: तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं। हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब, और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस, और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।
0: जी,
1: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इशू है, जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है।
0: जी।
1: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है, IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम चार पांच या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले। तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं। नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है, हम इंजेक्शन दे के ज्यादा अंडा जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफकोर्स हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं। फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब
0: बिल्कुल,
1: तो वो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं। फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में

0: हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज, तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं
1: जी। तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या। तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशान हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है?
0: तो सबको तो नहीं होती है, कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया। इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
1: अच्छा,
0: तो भी काफी हद तक PCO के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
1: अच्छा
0: जी, अगर स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफी हद तक ये
1: दूर कर दी
0: नेचुरली, यस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और दूसरी एक IUI करके भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिर्फ, मतलब नेचुरली है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे मैंने नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है, बट इसमें जो है स्पर्म्स जो है हस्बैंड के स्पर्म्स, हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपोजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में, यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपोजिट करते हैं, बस खाली उतना
1: फैसिलिटी।
0: हाँ, तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है।
1: अच्छा, तो कैसे दंपति ये विचार करेगा या डॉक्टर विचार करता है कि IUI से ये काम करना है या IVF को अपनाना है, ये डॉक्टर
0: पहले तो
1: करता है?
0: यस, ये पहले सब टेस्ट होती हैं। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं है, ये नहीं है जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है। काफी हद तक आई वुड से 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम
1: ये
0: है,
1: समस्या होती है। और ये तो
0: कई बार दोनों में होती है, कई बार हस्बैंड में होती है, लेडी में नहीं होती है।
1: लेकिन
0: ब्लेम होता है खास करके विलेजेस में, तो बहुत ही डिफिकल्ट,
1: गांवों में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि महिला बांझ है और उसे बड़ा, मतलब बुरा सुनना पड़ता है, जिसका दुख होता है। आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष ही बांझपन के कारण हो सकते हैं।
0: और एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना, जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी हो, बट एक्चुअली हस्बैंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आइदर अ गर्ल, लड़की या बॉय।
1: जी बिल्कुल सही कहा, इस पर से भी लोगों का अभी काफी जो है भ्रम उतरा है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का,
0: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म,
1: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जब हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, इससे पहले आपने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना जरूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिलें, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब आईवीएफ ऐसा नहीं है कि आईवीएफ करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
0: जरूरी है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है, इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
0: अच्छा, ठीक है।
1: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइदर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट्स कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना जरूरी है, बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करे जो भी इश्यूज हैं, उसको
0: डॉक्टर के सामने
1: रखें और फिर उससे डील करें, क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि, और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
0: और मेल ईगो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
1: ये जो फर्टिलिटी जो है ये मैक्सिमम है, ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती है, अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद जरूरत पड़े। वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एक फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देर आर सर्टन डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया, जो एक ब्लड डिसऑर्डर है जहां पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टन टेस्ट करते हैं, तो काफी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज के बारे में, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब, तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का ही की।
1: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना।

0: डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, छह महीने में किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर की परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। उसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए, फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर।
0: जी,
1: सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर वन कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निपल्स में से कोई डिस्चार्ज आना, कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना, या स्किन एक साइड पे खींची हुई है या कुछ भी अलग दिखे अदर देन रूटीन, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत जरूरी है। दिस इज माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप, जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेकअप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं, ECG निकालते हैं, अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए, स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं अली सरदार के इस साथ आवाज जगजीत सिंह की।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा, अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचो कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए एक पारंपरिक रचना, स्वर अली गनी का और संगीत भी अली गनी का ही है।

0: की सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सखियों को और आरती आपको भी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार।
2: चिंचिल आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज बहुत विषय हैं जिन पर हमारे जो फेसबुक से जुड़े श्रोता हैं उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं।
2: बिल्कुल, लेकिन
1: फिर भी हम विषय बताते हैं कि
2: जिससे कि हमारे जो श्रोता उनको एक बार हम अपने मुंह से बता सके।
1: अभी हर श्रोता नहीं जो फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, कई लोग सिर्फ रेडियो सुनने के लिए अपने आनंद के लिए भी सुनते हैं।
2: ये तो है।
1: तो भले वो हमें संदेश ना करें लेकिन उनके लिए भी क्या विषय है ये जानना जरूरी है। तो आज है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, इसके बारे में बात होगी।
2: और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं संगीता देवी जी जो कि हैं संस्थापक दिया माटी की, और साथ ही हम लेकर आए हैं मुहावरों की दुनिया।
1: तो कौन सा मुहावरा है भाई, आज किस मुहावरे पर हम बातचीत करेंगे?
2: आज हम मुहावरे पर बात करने वाले हैं कि अक्सर जो हम लोग करते हैं ना काम, कि अब भाई हम करेंगे करेंगे करके ओखली में सर दे ही देते हैं कि चलो कर ही देते हैं, अब क्या है। तो अच्छा, ओखली में सिर देना,
1: ओखली में सिर देना हुआ एक मुहावरा, इसी को दूसरे मुहावरे के साथ भी जोड़ते हैं ना।
2: हाँ,
1: ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डर।
2: बिल्कुल, अब आपने उसमें दाल ही दिया है ना तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा
1: जी। और कुछ हल्की फुल्की बातें भी होंगी, और ये हल्की फुल्की बातें भले है लेकिन बड़े काम की है, क्योंकि अब जो समय है त्योहारों का समय आ गया भाई, आ चला। और त्योहार आने का मतलब क्या,
2: त्योहार के नाम से ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि त्योहार मतलब बढ़िया खुशियां, एकदम चकाचौंध हर तरफ।
1: वो जो खुशियां और चकाचौंध है ये आती है थोड़ी सी साफ सफाई सजावट घर की होती है,
2: काम करना पड़ता है।
1: त्योहार मतलब सजावट भी है, थोड़ी साफ सफाई भी है, थोड़ा सा घर में काम भी हाथ बटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाएंगे ना सबके लिए, खाने के लिए, मेहमानों के लिए भी और घर के सदस्यों के लिए भी, तो वो भी एक काम होता है। और इन चीजों के लिए भाई खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना सजावट का सामान कैसे आएगा, घर में पकवान बनाने का सामान कैसे आएगा, तो खरीदारी भी
2: एक समझिए एक हमें आनंद का विषय है। खरीदारी करने जाना मतलब सच्ची में खरीदारी करने जाना मतलब सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि अब जाएंगे जो मन करेगा देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो देखेंगे वो हम अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे।
1: जो त्योहारों का समय होता है ना, इसी उत्सुकता और उत्साह की वजह से जो विक्रेता है वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं लोगों को और लुभाने के लिए ताकि लोग उनकी तरफ खरीदारी के लिए और आकर्षित।
2: बहुत सारी चीजें होती हैं और तरह तरह के ऑफर तो होते हैं, साथ में कई सारे और जो इस तरीके के विक्रेता होते हैं ना, तो कुछ जो लुभावने होते हैं इसमें वो ठगी का भी वो कर लेते हैं चीजें, तो इससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
1: ठगना भी नहीं है, अपना बजट भी नहीं बिगाड़ना है।
2: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम को संभालना है तो भी गाने
2: गीत तो सुनना पड़ेगा
1: जी।

0: आरती बहुत खूबसूरत गीत था, और उसके जो शब्द थे ना कि तन मन की सुध बुध गवा बैठी, कोई चीज जब दिल में समाती है, हमारे मन में बस जाती है ना, तो वो इतनी भाती है कि हमें सुध बुध नहीं रहती। और इसी तरह से जब हम किसी काम को बहुत डूब कर करते हैं तो उसकी सुध बुध नहीं रहती, और ऐसा काम हमें सफलता भी देता है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हम एक महिला को लेकर आए हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो है संगीता देवी, जो कि संस्थापक हैं दियामाटी की। तो संगीता देवी की कहानी बिहार की सीतामढ़ी जिले के परिहार से जुड़ी हुई है। ग्रामीण महिलाओं की खेती और पशुपालन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याओं ने उन्हें ऐसा सामूहिक मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें महिलाएं केवल किसान या लाभार्थी बनकर न रहकर कंपनी की शेयर धारक और निर्णय लेने वाली सदस्य बने।
0: तो उन्होंने जो निर्णय लिया ना आरती, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ग्रामीण महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जोड़ना जो ज्यादा तकनीक के बारे में नहीं जानती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो खेती से जुड़ी है, पशुपालन से जुड़ी है, तो उन्हीं के काम को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना। और संगीता देवी की कहानी जो आज हम बता रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये केवल एक

0: कंपनी की स्थापना की बात नहीं है, ये उस सोच की कहानी है या उस सोच की बात है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को मदद पाने वाली महिलाओं से निर्णय लेने वाली उद्यमी महिलाओं को बदलने का प्रयास किया गया। यानी कि वो महिलाएं जो अब तक सिर्फ दूसरों से मदद मांग रही थी,
1: सही बात है,
0: वो उठकर इतनी सशक्त बनी कि वो उद्यमी बनी और दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सकी। और इस कंपनी की नींव गांव की महिलाओं ने जो कि रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, बस वहीं से पड़ गई।
1: बिल्कुल, इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें। अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है, तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हैं, तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
0: आरती और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, इनकी सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी क्या है, तो माटी जो है वो गांव की है और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही हैं। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनसे हुई थी
0: और हर पंचायत से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी। और कहें कि शुरुआत करना इस चीज के लिए बहुत आसान तो नहीं था क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने ना पहले कभी कोई कंपनी बनाई थी, शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये शब्द उन्होंने ना सुने थे ना ऐसा कोई काम किया था। तो इस टीम ने गांव-गांव बैठकों का आयोजन किया और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना जहाँ इन्होंने ये जब ये सब नए शब्द थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था, वहाँ उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
0: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज नहीं की जा रही है और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है उसको बढ़ाना था।
1: बिल्कुल, और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यानी कि आप समझ लीजिए, जो भी कुछ गाँव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
0: बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए हर चीज आज जो एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी
0: और कंपनी भविष्य लक्ष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है, हम ये कभी ना सोचें कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए
1: अभी समय हो गया एक छोटे से
0: अंतराल का।
1: हाँ।

0: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है,
1: है भी
0: अब
1: अच्छा।
0: बात करते हैं एक मुहावरे की जो है ओखली में सिर देना। नहीं, बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखकर खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत
1: बिल्कुल।
0: है। और ऐसे मौकों के लिए ही हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तो है भाई आबैल मुझे मारो, और एक है ओखली में सिर देना जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, यानी कि किसी भी परेशानी में जानबूझकर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मूसल तो पड़ेंगे ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारियों में बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो करूंगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं, कहीं पर आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सेहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि जरा और दूसरा गाना लगा दे। तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
0: बिल्कुल, यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने। और जब धनाधन मूसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में थी क्यों दिया था हमने ये सिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो और हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
1: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं, और हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
0: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना, और ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, इसका अर्थ है कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

0: तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं और लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी नुकसान या संकट आने वाला है स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
0: और भी संदेश है इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सिर देना ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्षों से डरने का कोई फायदा नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है ऐसा भी नहीं है।
0: एक हमारे श्रोता है जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई

0: तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया। तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता, यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो खराब हो गए हैं, तो इन्हें नया लगवा लीजिए, उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया, पर मैंने यही सोच लिया कि अब उखली में सिर दिया है तो अब डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है,
0: यानी
1: उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
0: कि सिर्फ दिखाने गए थे और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए अब हम भी एक गाना सुन लेते हैं।

हर हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल। प्यार की कसम।

0: प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया।
1: आरती, ये खूबसूरत गीत था ब्लफ मास्टर फिल्म का, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और बातों के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली ये हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई इससे डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भाई आरती? मिठाई
1: आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार? नहीं, सबसे पहले शुरू होता है भाई चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल,
0: और कई बार तो होता ही है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें। कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज, भाई नहीं रख दो काम की चीज है।
1: बिल्कुल, और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारत फैमिलीज होती हैं उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज़ हम उसको खराब नहीं करते। कोई डिब्बा है तो उसको खाली चलो उसको धो के रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ा उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए बस
0: एल्बम
1: फिर क्या हो गया काम, फिर तो सफाई बंद यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला,
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पर डाल दिए जाते हैं। और घर से जब हम निकलते ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं ना कि लुभावने अवसर जो होते हैं, जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने हैं, सड़की चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो, और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मैं
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो,
0: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी जो दुकानें होती हैं, जो सामान होता है, सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है तो मन ही नहीं करता वहां से हटें, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें, तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते हैं, ये वाला झूमर भी ले लें, ये वाली कंदील भी ले लें, ये वाली लड़ भी ले लें, इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
1: बिल्कुल, और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का उत्साह तो ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं है ना,
0: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी है बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम करता है, कुशन को उठाया यहां से वहां रख दिया, ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी इस तरह से
1: बिल्कुल छोटी छोटी चीजें उठा के अच्छा ये चीज वहां है वहां रख दी, काम कर रहे दिख रहा कि आज हम काम कर रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
0: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: सच में जो बहारों की जो रुत आ रही है यानी कि त्योहारों की रुत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है, और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहाँ सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार आ रहे हों और घर में साफ सफाई ना हो, ये असंभव है, और पति देव के पॉकेट की भी सफाई ना हो, ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पति देव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं, तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई है।
1: बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वहीं विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मजा होता है इन चीजों का।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से ही सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
0: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्योहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी

0: बेकार है, इसीलिए असली मजा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहां एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्योहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं। अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, नहीं देते थे लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियाँ लेती हैं। सफाई तो नजाकत से बयान करती ही हैं। मतलब चीजें हैं कि देखिए, साफ सफाई घर में होनी चाहिए बहुत सारी, जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती
0: और
1: है।
0: और इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी ही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में और सीलन से कई बार चीजें खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद में। फिर जब ये त्योहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ियों के, उसकी साफ सफाई हो जाती है और पूरा घर, कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकोड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसियों के घर भी कई बार हम मिठाइयां पहुंचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सबके साथ मिलकर ये खुशियां बांटना ये बात ही अलग होती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी, सजावट सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है। मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीज़ें मुझे मिलती नहीं हैं और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीज़ों में मेरी जो चीज़ें वो मैं ही रखता हूँ, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है। मतलब त्यौहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्यौहार में सफाई होती है ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए, वो मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना, बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद करें, ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
0: तो हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की, अपनी चीजों की सफाई कैसे रखनी, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं और घर को साफ करने के लिए भी नई चीजें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुलाकर त्योहारों में उनसे भी गले मिलिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और खरीदारी त्योहारों की केवल बाहरी तैयारियां हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर खुश और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है तब मन में भी खुशियां, जो खुशियां उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
0: बिल्कुल। घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्योहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है जब उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस। और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको खास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। यह मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज है उनके लिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल, किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है आरती, तो किसी को बोलने या फिर रोजमर्रा के जो काम है उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, किसी को थोड़ी कम होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देखकर हम उसके लिए अपनी सीमाएं तय कर देते हैं। यहीं से सोच बदलने की जरूरत है। कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए।
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में। तो हम सहानुभूति ना दिखाएं, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल। और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाजों और सामूहिक एकता की ताकत पर जोर देता है।
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से, श्रोता में बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सजावट करते हैं त्यौहार
1: देखिए ना,
0: की।
1: संदेश आने बंद ही नहीं हो रहे
0: हाँ
1: हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्की, पुरानी यादें ताजा करी जाती हैं, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्योहार को सच में त्योहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे, और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया। तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी की धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन
0: बिल्कुल।
1: लेते हैं गाना।

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि
1: हम भी
0: सयोनारा कहने का
1: हम भी सयोनारा कहते
0: और कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर ये वादा करते हुए
1: लेकिन कोई और और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार

0: विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है, और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ, आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई हैं, जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था। मेरे सारे अभी मतलब मैं थोड़ा सा खोया खोया हूँ, क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूं, कैसे बात करूं।
0: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए हैं, ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे, सबसे ज्यादा जरूरी। और आपके पसंदीदा गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, वो भी आपको शेयर करने। और रेडियो में जैसे हम आए, विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे साथ।
1: बिल्कुल।
0: तो विविध भारती किस तरह से आपकी जिंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें जरूर बताएं, वहां से शुरुआत करते हैं।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूँ, और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे हैं। सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं। पहले तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, तो 12 रुपये या 15 रुपये में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए। तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी। फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से, और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
0: हाँ, 4 या 5 बजे।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी, जी।
1: तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, बच्चे ही थे, और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया, और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी,
0: क्या बात है।
1: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसे की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के, या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे,
0: जी जी।
1: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया। और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
0: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विविध भारती मेरे जिंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है, तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए, और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए, है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना। क्योंकि एक बाल्य मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना चाहता हूँ।
0: ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगी पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
1: शुक्रिया।
0: बचपन की जैसे बात की आपने, तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए, क्या वो इस चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं, उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जिसे सही मानो में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन?
1: बिल्कुल, अरे वाह। एक तो जहाँ पे मतलब, क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था,

0: रात्रि सेवा भी सुनता था। अगर मेरी आंखें खुल गई हों 2:30 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था और गाने चल रहे होते थे। मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी, तो जहां मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहां अगर मैं ये कहूं कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे।
1: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे।
0: नहीं, कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा,
1: अच्छा।
0: है ना। बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है ये फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वालों को ऐसा ही देखा है। तो बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा।
1: अच्छा।
0: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा। तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊं मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विद्यार्थी ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
1: और
0: कोई
1: सपनों की
0: और
1: नगरी में आना ही है
0: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे,
1: जी।
0: तुम्हारा है तुम लड़ो।
1: बचपन में कैसे थे, नटखट थे?
0: अरे बहुत
1: किस
0: ज्यादा।
1: तरह के आपने बचपन को जिया है जैसे,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: किस
0: जी
1: तरह से जिया है? वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे भाई बहनों के बीच?
0: बिल्कुल
1: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
0: हाँ, मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह है कि जहां मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है,
1: अच्छा।
0: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ। और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहां पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहां पे तीन तीन पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन।
1: अच्छा।
0: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गांव, तीन पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई बार
1: कोई ना
0: मुझे
1: कोई
0: लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
1: जी,
0: और सब कुछ लिखा हुआ होता है।
1: बिल्कुल।
0: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपनी आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में सभी घर में सभी माँ चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी, हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी पांच भाई थे और उनमें से तीन भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई BSF में है। वहां एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, बट
1: अच्छा।
0: मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था। कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलॉसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास।
1: बिल्कुल।
0: मैं बेवजह खुश हो जाता हूं कई बार।
1: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है, जिसे
0: हाँ
1: हम बाहर तलाशते हैं।
0: जी, और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा मुझे काम मिलेगा,
1: बिल्कुल,
0: यही एटीट्यूड था मुझे। कभी भी
1: क्या बात
0: शक
1: है।
0: नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
0: हाँ
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन
0: वाह,
1: सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: प्यारा गीत है, गाने का बोल है, जब हम जवां होंगे जाने कहां
1: क्या
0: होंगे।
1: बात है, क्या बात है। बेताब फिल्म का ये गीत हम सुनवा अपने सुनने वालों को।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो
1: अच्छा
0: बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीजें, जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस से लिवाओ।
0: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: उस
1: जी
0: तरफ रुझान शुरू से था।
1: हाँ, और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया।
0: अच्छा
1: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ,
0: ये
1: बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
0: आपने पटना से किया
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी?
1: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है ये
0: बिल्कुल
1: सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
0: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
1: हाँ
0: आ गया
1: जी
0: था,
1: हाँ जी हाँ
0: इसीलिए
1: जी हाँ
0: वो
1: जी,
0: फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं ये अब महसूस करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
0: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं,
1: देखो,
0: सुनाएंगे?
1: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूंगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूंगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लाला दत्ता की फिल्म थी।
0: जी।
1: अरे

0: अच्छा, हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया
1: हाँ जी
0: है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहां से
1: ये
0: आया?
1: सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे हम बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो वो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय।

0: की वजह से मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन। तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं
1: बिल्कुल
0: भूल ना जाऊं। मेरे यहाँ ना वही जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना।
1: बहुत कमाल।
0: तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं मैं तो देख चुका हूँ। बोले नहीं नहीं फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ रही है कि भाई 1 2 3 चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चोंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं
1: अच्छा
0: मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था। और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई और तब तक 12 12:30 हो चुके थे, और मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्तों भाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने
1: जी
0: मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगा यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई। बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1 2 महीने के बाद फिर से क्योंकि पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था।
1: जी
0: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
1: रच बस गया था सिनेमा।
0: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियां आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
1: जी
0: आज,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
0: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था तो मुझे यह था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे। तो मैंने ना 1 से 12 15 सवाल तैयार करके रखा था, यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
1: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं।
0: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है। मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूं मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
1: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
0: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक
1: बिल्कुल
0: पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
1: ये
0: चादर।
1: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
0: बिल्कुल
1: नहीं सपने देखने से,
0: हाँ,
1: और जो चाहेंगे वो होगा,
0: हो जाएगा।
1: बस वो मेहनत की जरूरत है
0: एक ही
1: और
0: जिंदगी मिली है
1: शिद्दत।
0: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
1: जी,
0: है ना,
1: मन की
0: और
1: खुशी।
0: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा।
1: जी
0: नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीचिका जो होता है ना, वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहां,
1: बिल्कुल
0: लोग को लगता है अरे सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूं माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊं आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूं, ना कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूं, एक कमाल की एनर्जी में होता हूं। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही है ये बात, एक्शन और कट
0: बिल्कुल
1: के बीच का
0: बिल्कुल,
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है।

0: जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस, और जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अब इन्हें भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल
1: ध्यान,
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूँ और समझता हूँ कि उस लम्हे को जी लूँ, उस पल को जी लूँ। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश होती है। उसके आसपास भी चला जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहां पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा.
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना।

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहां थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज़ नहीं है, इसको खेलना है, नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे, और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक,
0: जी
1: कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो।
0: जी
1: मैं उसमें बाल्य कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया
0: जी
1: करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे। और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे,
0: अच्छा,
1: गांधी गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लग रहा था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली करेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें,
0: जी
1: है ना, करेक्टर कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज खत्म करने के बाद पटना मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था।

0: हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार जबकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
1: बिल्कुल
0: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो, कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे एक महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊंगा। और
1: अच्छा
0: मैं उस एक महीने में राग दरबारी एक प्ले था, शिलाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय।
1: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: बिल्कुल।
1: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और
0: हाँ
1: उसके
0: जी,
1: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
0: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप चार भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: बिल्कुल
0: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगूं। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में, IMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहाँ पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मेरे पूरे पैसे नहीं आते थे, है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी याद, वो जो पहला दिन था, उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूं, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को जब पीछे मुड़ के देखता हूँ। तो कुछ भी आइडिया नहीं था, आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो क्या हिम्मत था उस लड़के में, आज का चंदन तो नहीं आता, है ना।
1: जी
0: 50 चीजें सोचता, उस समय कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीजों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन वहाँ उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
1: अच्छा
0: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए, उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया
1: अच्छा
0: ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा,
1: अच्छा
0: फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस
1: बिल्कुल
0: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो 1-2 दिन 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था आपके लिए
0: मजेदार तो
1: ये
0: बिल्कुल
1: जीवन,
0: था, बिल्कुल था,
1: है
0: वो
1: ना? उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी
1: लेते।
0: भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं।

0: या मुंबई में हूं या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूं,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत जरूरी थे, वो अनुभव बहुत जरूरी था, तभी तो आज जब चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उड़ता नहीं हूं, उछलता नहीं हूं, क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वहां भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए,
1: जी जी
0: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहां,
1: ओके,
0: कि दो तीन दिन में जितना भरपेट खा लूं ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊं तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था, वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहां से सात बंगला होते हुए, चार बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहां से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यसराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था।
1: अच्छा।
0: और सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तरबतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था, और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात यह है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने देखा है, भोगा है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं, इसलिए ये सब चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे।
1: अच्छा।
0: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था उसमें।
1: अच्छा।
0: तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है। मैं रोज 12 से 15 20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया।
1: अच्छा।
0: उसमें सोल वगैरह कुछ नहीं था, तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई तेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे, तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर 1.5-2 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं आज यहां बैठा हूं ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है,
0: आशीर्वाद है। अगर वो लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए, यहाँ सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: Okay.
1: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना, मैं सारे बचपन के सारे गाने लेके
1: बिल्कुल सुनवाते हैं गीत।
0: हाँ जी।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सकों से चिकित्सा पेशे को केवल आजीविका का साधन न मानकर करुणा, संवेदनशीलता और निस्वार्थ सेवा जिससे मरीजों को आत्मीयता का अनुभव हो और संस्थान की प्रतिष्ठा भी बढ़े। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौरा में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने आज आक्रोश जताते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने सिद्धो कान्हू चौक के पास टाटा पटमदा मुख्य सड़क जाम कर दिया। विद्यार्थी शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने कर उन्हें विद्यालय में वापस भेजने की मांग की। सूचना मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनकी जनसमस्याएं सुनी और आंदोलन समाप्त करने का प्रयास किया। जमशेदपुर के सोनारी में कागल नगर गोल्डन टाउन स्थित सेटन पिंक सैलून से जुड़े 2,51,80,000 रुपए की कथित ठगी के मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता के अनुसार फ्रेंडली लोन, बिजनेस पार्टनरशिप और सैलून में निवेश करने के नाम पर रकम ली गई है। पुलिस बैंक रिकॉर्ड, चैट और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल गोलचक्कर के पास आज एक सड़क हादसे में चांडल पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के छात्र प्रेम कुमार महतो की मौत हो गई है। इस हादसे में दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कॉलेज में शोक सभा आयोजित कर मृत छात्र को श्रद्धांजलि दी गई। देवघर नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ मोहल्ला स्थित सेवाधाम के पास चोरों ने आज अहले सुबह SBI की ATM मशीन की चोरी की घटना को अंजाम दिया।

0: से सात अपराधियों ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काट कर बाहर निकाला, फिर रस्सी से बांधकर घसीटते हुए कार में लोड कर फरार हो गए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पाए तो कोई बात नहीं, और हम बस तेरे हैं ये बात लिखूंगी, हर कोई पढ़ सके इतना साफ साफ लिखूंगी। एक रात मैं ये बात लिख दूंगी।

जानते हैं वो, फिर भी अनजान बनते हैं। पूछते हैं हमसे कि आपकी पसंद क्या है, खुद जवाब होकर हमसे सवाल करते हैं। सुनो तुम, खुशबू की तरह मेरी हर सांस में अपना प्यार बसाने का वादा करो। रंग जितने तुम्हारी मोहब्बत के हैं मेरे दिल में सजाने का वादा करो। सिर्फ लफ्जों से इकरार होता नहीं, यक तरफा प्यार होता नहीं। मैं तुम्हें याद रखने की कसम उठाऊं, तुम मुझे ना भुलाने का वादा करो।

की हर धड़कन आपका नाम सुनाती है। आपसे इश्क है बेहद और बेहिसाब, ये बात मेरी खामोशी सुनाती है। एक तुम ही को खुदा से मांगा है, जब भी मांगी कोई दुआ पास आओ, ये इल्तिजा सुन लो। प्यार है तुमसे बेपना सुन लो, इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे, तुम हो चाहत की इंतहा सुन लो। इश्क भी तुमसे प्यार भी तुमसे, मेरे इंतजार की राहत मेरे दिल की चाहत हो तुम, आंखों से छलकता जाम हो तुम, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम, सिर्फ तुम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मसर्रतें तेरे नाम, मेरे हम कदम, मेरे हम नशी, ये रफ़्तारें तेरे नाम। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आईना, कभी अक्स तू, मेरे हम नवा, मेरी ख्वाहिशें, मेरी मोहब्बतें तेरे नाम। कभी ये हंसी, कभी ये नमी, कभी रंजिशें, कभी कुर्बतें, मेरी जिंदगी की ये सभी हसीन इबारतें तेरे

मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है तेरी हर एक आदत से, तेरी बेजा शिकायत से, तेरी राहों में रुकने से, तेरे कदमों की आहट से, तेरी मुस्कुराहट से, तेरी आँखों के जादू से, तेरी बातों की खुशबू से, तेरी दिलकश अदाओं से, तेरे कातिल जफाओं से, मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 5:30 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 आप सुन सकेंगे ये प्रादेशिक मुख्य समाचार। शाम 6:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

कृषकों एवं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी का समय होगा शाम 6:30 से शाम 6:55 पर। हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर जिले में आजकल

फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या आप सुन सकेंगे 7:15 से। खुला आकाश का समय होगा 7:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8:00 देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश गान आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। न्यूज़ @9 रात्रि 9:00। उर्दू में खबरें रात्रि 9:15 पर।

रात 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। रात 10:00 आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंथा। रात्रि 10:30 आप सुनिएगा कार्यक्रम एक रंग। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00, अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। और हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध केवल हमारे आसपास की सफाई से नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज और देश के भविष्य से भी है। दोस्तों, हमारा विषय है स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य। दोस्तों, भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है। हमारे देश की प्रगति तभी पूरी मानी जा सकती

केवल हमारे आसपास की सफाई से नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज और देश के भविष्य से भी है। दोस्तों, हमारा विषय है स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य। दोस्तों, भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है। हमारे देश की प्रगति तभी पूरी मानी जा सकती

स्वच्छ रहेगा तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि युवाओं की भागीदारी इसमें क्या है और कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। भारत की बड़ी युवा आबादी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि युवा स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो स्वच्छ भारत का सपना और भी तेज़ी से पूरा हो सकता है। दोस्तों, युवा सबसे पहले अपने घर और अपने आसपास से शुरुआत कर सकते हैं। वे अपने परिवार और दोस्तों को समझा सकते हैं कि सड़क पार या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकें। कूड़ा प्लास्टिक बैग में ही डालना चाहिए, एक छोटी सी आदत लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ सकता है। दोस्तों, युवा स्वच्छता अभियान, श्रमदान, जागरूकता रैलियां और स्कूल कॉलेजों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करके भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। आज युवा सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, युवाओं की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है प्लास्टिक का कम उपयोग और कचरे का सही प्रबंधन। बाजार जाते समय कपड़े या जूट के बैग का इस्तेमाल करना, पानी की बोतल को बार बार उपयोग करना और अनावश्यक प्लास्टिक से बचना, जैसे कि छोटे कदम पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम लग सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा युवा अपने स्कूल और कॉलेज में स्वच्छ परिसर, नो प्लास्टिक डे यानी कि पौधारोपण अभियान और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। वे दूसरों को केवल सलाह देने के बजाय स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रभावी संदेश वही होता है जिसे हम अपने व्यवहार से दिखाते हैं। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, 2 अक्टूबर को सफाई करना और अगले दिन कूड़ा फैलाना स्वच्छ भारत का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। स्वच्छता को हम अपने रोज़मर्रा की आदत और जीवन शैली में अपनाना चाहिए। दोस्तों, आज के युवाओं के पास शिक्षा, तकनीक, ऊर्जा तीनों है, इसलिए युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि स्वयं गंदगी न फैलाएंगे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, स्वच्छ भारत केवल सरकार का सपना नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएगा तभी हमारा भारत स्वयं वास्तव में स्वच्छ बन सकता है और सुंदर भी। तो दोस्तों, न गंदगी फैलाएं, न फैलाने देंगे, कूड़ा उचित स्थान पर ही डालें, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और स्वच्छ भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। दोस्तों, क्योंकि स्वच्छ भारत केवल साफ सड़कें से नहीं बल्कि स्वच्छ सोच और जिम्मेदारी नागरिकों से भी बनता है। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य के बारे में। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस गाने के बाद आए सुनवाते हैं आपको वार्ता। विषय राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति और युवाओं का भविष्य। वार्ताकार है मुकेश कुमार शर्मा।
1: आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध हमारे बच्चों, युवाओं, शिक्षकों और देश के भविष्य से है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020, परिकल्पना, उद्देश्य एवं भविष्य। शिक्षा किसी भी देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला होती है। शिक्षा केवल किताब पढ़ने, परीक्षा देने और अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के ज्ञान, सोच, व्यवहार, कौशल, व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करती है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे सामान्य रूप से NEP 2020 भी कहा जाता है, जिसे 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। यह नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की दिशा प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति

0: शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करती है जिसे प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार सीखने का अवसर मिलते हैं। इसका लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बनाना है जो भारतीय मूल्यों, संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जुड़ी हो, लेकिन साथ ही विद्यार्थियों को आधुनिक समय की आवश्यकताओं के लिए भी तैयार करें। नई शिक्षा नीति एक ऐसे ज्ञान समाज की कल्पना करती है जिसमें शिक्षा सभी के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और सम्मान अवसर प्रदान करने वाली हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो विद्यार्थी को केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करें। 5+3+3+4 की नई शिक्षा संरचना क्या है? नई शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है 5+3+3+4 शिक्षा संरचना। पहले स्कूल शिक्षा की संरचना मुख्य रूप से 10+2 के रूप में जानी जाती थी। नई नीति में बच्चों की उम्र और उनके मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण फाउंडेशन स्टेज है जो 5 वर्ष का है। इसमें 3 वर्ष प्री स्कूल या आंगनबाड़ी तथा कक्षा 1 और 2 शामिल है। चरण 2 प्रिपरेटरी स्टेज जो कक्षा 3 से 5 तक 3 वर्ष का है। तीसरा चरण है मिडिल स्टेज जिसमें कक्षा 6 से 8 तक 3 वर्ष शामिल है। चौथा चरण है सेकेंडरी स्टेज जो कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष का है। इन संरचना का उद्देश्य बच्चों का उम्र और विकास के स्तर के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है। रटने के बजाय समझने पर जोर। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अर्थात विषय की मूल अवधारणा को समझना। कई बार विद्यार्थी परीक्षा के लिए उत्तर याद कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं। नई शिक्षा नीति इस प्रकार की केवल रटने वाली शिक्षा के स्थान पर ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देती है जिसमें विद्यार्थी विषय को समझे और उपयोग कर सके, अर्थात विद्यार्थी से केवल यह नहीं पूछा जाए कि उत्तर क्या है बल्कि यह भी समझाया जाए कि उत्तर क्यों है और यह वास्तविक जीवन में कैसे उपयोगी है। विद्यार्थी को विषय चुनने की अधिक स्वतंत्रता। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने में अधिक लचीला देने की दिशा में जोर दिया गया है। पहले अक्सर विज्ञान, कला और वाणिज्य जैसे विषयों के बीच एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता था। नई शिक्षा नीति में इस कठोर विभाजन को कम करने की दिशा में प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यार्थी की रुचि विज्ञान के साथ साथ संगीत, कला, खेल या किसी व्यवसायिक कौशल में है तो शिक्षा व्यवस्था में उसके लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की सोच है। इसका मूल संदेश है हर विद्यार्थी अलग है, उसकी रुचि और क्षमता अलग है, इसलिए दिशा के अवसर भी अधिक लचीले होनी चाहिए। मातृभाषा और भारतीय भाषाओं का महत्व। नई शिक्षा नीति में भाषा को भी विशेष महत्व दिया गया है। नीति में जहां संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक और बेहतर हो तो कक्षा 8 तथा उसके आगे भी बच्चों की मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा देने की बात करी गई है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे जिस भाषा को आसानी से समझते हैं उस भाषा के माध्यम से वे विषयों को अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके। साथ ही भारतीय भाषाओं, बहुभाषिकता और भारतीय ज्ञान परंपरा को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। कौशल और व्यवसायिक शिक्षा। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है शिक्षा को कौशल और रोजगार से जोड़ा जाए। विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उन्हें प्रैक्टिकल स्किल और वोकेशनल स्किल से भी परिचित कराने पर जोर दिया गया है। इससे विद्यार्थियों में अलग अलग प्रकार के कौशल विकसित हों और वे भविष्य में रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमिता के अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। यानी नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश है, ज्ञान के साथ कौशल और कौशल के साथ आत्मनिर्भरता, विद्यार्थी का समग्र विकास। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के विकास को केवल परीक्षा के अंकों से नहीं जोड़ा गया है, विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और बौद्धिक विकास भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसलिए शिक्षा में खेल, कला, संस्कृति, स्वास्थ्य, जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों को भी महत्व देने की बात कही गई है, क्योंकि एक विद्यार्थी के अच्छे अंक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ उसका अच्छा व्यवहार, आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका। किसी भी शिक्षा नीति की सफलता में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को केवल पाठ पढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, परामर्शदाता और सहायक के रूप में देखने पर जोर दिया गया है। एक अच्छा शिक्षक केवल किताब का उत्तर नहीं बताते, बल्कि विद्यार्थियों में सोचने, समझने एवं स्वयं समाधान खोजने की क्षमता भी विकसित कराते हैं। उच्च शिक्षा में बदलाव। नई शिक्षा नीति का संबंध केवल स्कूल शिक्षा से नहीं है, इसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की दिशा प्रस्तुत की गई है। उच्च शिक्षा को अधिक बहुविषयक और लचीला बनाने पर जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों को पढ़ने और अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा का मार्ग चुनने को अधिक अवसर देने की सोच इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक व्यापक, गुणवत्तापूर्ण और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य। अब यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में समझे तो इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं, पहला, सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देना, दूसरा, शिक्षा को अधिक समावेशी और सम्मान अवसर वाला बनाना, तीसरा, विद्यार्थियों में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, चौथा, रटने के बजाय समझ और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देना, पांचवा, शिक्षा के साथ व्यवसायिक स्किल को बढ़ावा देना, छठा, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना, सातवां, भारतीय भाषाओं, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को महत्व देना। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 की भविष्य। नई शिक्षा नीति बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देने के बजाय कौशल, रचनात्मक, तकनीक और व्यवहारिक सीख से जोड़ने पर जोर दिया गया है। भविष्य में बच्चों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, अनुसंधान, नवाचार, व्यवसायिक शिक्षा एवं स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बढ़ेंगे। सबसे खास बात यह है कि बच्चे अपनी रुचि, प्रतिभा और क्षमता के अनुसार अपने भविष्य और कैरियर का चुनाव कर सकेंगे। समापन। आज की चर्चा में हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव का नाम नहीं है, यह शिक्षा को देखने के तरीके में बदलाव की एक व्यापक दिशा प्रस्तुत करती है। इसका संदेश है कि बच्चे को केवल परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, बल्कि उसे जीवन जीने के लिए भी तैयार करना है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति और युवाओं का भविष्य। वार्ताकार थे मुकेश कुमार शर्मा। दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए अब हम बातें करते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। भारत एक युवा

देश है, हमारे देश की बड़ी आबादी युवा है और युवाओं के पास प्रतिभा, ऊर्जा, नए विचार और कुछ अलग करने का जुनून भी है। ऐसे में यदि युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय और रोजगार के अवसर में बदलने का सही मंच मिले तो वो केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की पहल की थी। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश में स्टार्टअप और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका मतलब कि अगर किसी युवा के पास कोई नया और उपयोगी विचार है तो वह केवल यह न सोचे कि उसे नौकरी कहाँ मिलेगी बल्कि यह भी सोच सकता है कि वह अपने विचार के आधार पर अपना व्यवसाय कैसे शुरू कर सकता है और दूसरों के लिए रोजगार पैदा कर सकता है। दोस्तों, स्टार्टअप केवल बड़ी कंपनी का नाम नहीं बल्कि एक छोटा व्यवसाय भी है। यदि वह किसी नई समस्या का समाधान करने के लिए नए तरीके और तकनीक का इस्तेमाल करता है तथा आगे बढ़ने की क्षमता रखता है तो वह स्टार्टअप के रूप में विकसित हो सकता है। दोस्तों, आज भारत में तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय सेवाएँ, ई फार्मिंग, परिवहन, पर्यावरण और कई अन्य क्षेत्रों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, भारत हमारे देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा शिक्षा पूरी करके रोजगार की तलाश करते हैं। यदि सभी लोग केवल सरकारी या निजी नौकरी पर निर्भर रहें तो रोजगार की समस्या तो पूरे तरह समाप्त करना कठिन होगा। इसलिए आवश्यकता है कि युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों, एक सफल स्टार्टअप केवल उसके स्थापक के लिए रोजगार नहीं बनाता बल्कि उसके साथ साथ कई अन्य लोगों को भी काम करने का अवसर मिलता है। इस तरह एक अच्छा विचार धीरे धीरे रोजगार के अनेक अवसर पैदा कर सकता है। दोस्तों, युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया का महत्व क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। स्टार्टअप इंडिया युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का युवा तकनीक से जुड़ा हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट और सोशल मीडिया ने व्यवसाय शुरू करने और ग्राहकों तक पहुँचाने के तरीके को काफ़ी आसान बना दिया है। आज कोई युवा अपने शहर या गांव से भी कोई डिजिटल सेवा, ऑनलाइन शिक्षा, कृषि से जुड़ी तकनीक, स्थानीय उत्पादकों की बिक्री या दूसरी उपयोगी सेवा शुरू कर सकता है। युवाओं को यह समझना होगा कि सफलता किसी का प्रसार का अंत नहीं। व्यवसाय में कई बार पहली कोशिश सफल नहीं होती लेकिन उससे मिला और अनुभव अगली कोशिश को बेहतर ज़रूर बना सकता है। इसलिए युवाओं में जोखिम लेने की क्षमता के साथ साथ सही योजना, धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने की आदतें भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया से मिलने वाले अवसर क्या हैं? स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से उद्यमियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के अवसर भी मिलते हैं। सरकार ने स्टार्टअप के लिए पंजीकरण नियमों का आसान बनाने में मेंटरशिप, फंडिंग और नवाचार को प्रोत्साहित करने जैसी व्यवस्थाएं भी विकसित की हैं। इसके अलावा स्टार्टअप सीड फाउंड सिस्टम जैसे कि पहले शुरुआती चरण में योग्य स्टार्टअप को अपने विचार को विकसित करने और उत्पाद या सेवा को बाजार तक पहुंचाने में सहायता देने के उद्देश्य से बनाई गई। आज देश में कई एक ऐसे स्टार्टअप सामने आए हैं जिन्होंने भारत की समस्याओं को ही अपने व्यवसाय के अवसर में बदल दिया। किसी ने ऑनलाइन शिक्षा को आसान बनाया, किसी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया, किसी ने किसानों के लिए तकनीक समाधान विकसित किए और किसी ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के नए तरीके खोजे। आत्मनिर्भर भारत में योगदान स्टार्टअप इंडिया का संबंध आत्मनिर्भर भारत की सोच में जुड़ा हुआ है। जब देश के युवा अपने व्यवसाय शुरू करते हैं, नए उत्पाद बनाते हैं और नई सेवाएं विकसित करते हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। स्थानीय स्तर पर व्यवसाय बढ़ाने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, नए कौशल विकसित होते हैं और कई बार स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होता है। एक युवा यदि अपने गांव या छोटे शहर में रहकर सफल व्यवसाय खड़ा करता है तो वह अपने साथ साथ अपने क्षेत्र के विकास में भी योगदान देता है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। दोस्तों, स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं, केवल एक अच्छा विचार होना पर्याप्त नहीं। इसके लिए बाजार की समझ, सही टीम, पूंजी, तकनीक, ग्राहक और मजबूत योजना की भी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इसमें युवाओं की जिम्मेदारी है कि युवाओं की भूमिका केवल स्टार्टअप शुरू करने तक ही सीमित नहीं बल्कि उनके आसपास की समस्याओं को पहचानना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। एक अच्छा उद्यमी वही है जो लोगों की वास्तविक ज़रूरतों को समझता है। हमारे गाँव में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, स्वच्छता, पानी, कचरा प्रबंधन और स्थानीय उत्पादनों से जुड़े अनेक क्षेत्र हैं जहाँ युवा नए नए विचार और साथ काम कर रहे हैं।
दोस्तों, यदि युवा अपनी प्रतिभा केवल नौकरी की तलाश तक सीमित न रहकर नवाचार, उद्यमिता

रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ाएं तो भारत आने वाले समय में अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम देश बन सकता है। इसलिए यही स्टार्टअप इंडिया की भावना है कि ये नए आत्मनिर्भर युवाओं को विकसित भारत की दिशा की ओर नए विचार रखना और भी महत्वपूर्ण करके दिखा सकता है। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सकों से चिकित्सा पेशे को केवल आजीविका का साधन न मानकर करुणा, संवेदनशीलता और निस्वार्थ सेवा का माध्यम बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मरीजों को आत्मीयता का अनुभव हो और संस्थान की प्रतिष्ठा भी बढ़े। डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार से झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में टीम गठित करने की मांग की है। मेदिनीनगर स्थित सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो भाषा के क्षेत्र में काम कर चुके हों। रांची के गेतलसूद डैम पर निर्मित 100 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से फुल लोड उत्पादन शुरू हो गया है। इसके पहले 29 अगस्त को 50 मेगावाट उत्पादन शुरू हुआ था। इस प्लांट का निर्माण केंद्र सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी की मॉनिटरिंग में LNT कंपनी ने किया है। इसके निर्माण में करीब 488 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें वित्तीय सहायता के तौर पर विश्व बैंक की ओर से कुल लागत की 50% यानी करीब 244 करोड़ रुपए दिए गए हैं। धनबाद के IIT ISM में आज सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज ईस्टर्न जोन का आयोजन किया गया।

0: कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने स्टार्टअप नवाचार और स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। जमशेदपुर के सोनारी में कागल नगर गोल्डन टाउन स्थित सेटन पिंक सैलून से जुड़े 2,51,80,000 रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता के अनुसार फ्रेंडली लोन, बिजनेस पार्टनरशिप और सैलून में निवेश के नाम पर रकम ली गई। पुलिस बैंक रिकॉर्ड, चैट और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
2: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: વાણી
1: वैज्ञानिक विधि से खेती करू आमदनी के बढ़ाऊ।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनैया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: जुगनी बटले
2: जोहार।
1: और ई कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कृषि मनुष्य जीवन कर एगो महत्वपूर्ण आधार है के और खाद्य पदार्थ पूरा करे कर संगे कृषि रोजगार और आय के भी साधन है के, है कि नहीं?
7: हाँ, सही बात कहली। और जैसे भारत जैसन कृषि प्रधान देश में किसान मन कर महत्वपूर्ण भूमिका है।
6: बदलते मौसम, पानी कर कमी, खेती में बगरा लागत और कीट रोग जैसन समस्या कर चलते पहले के तुलना में खेती एगो चुनौतीपूर्ण हो गलक है।
7: हाँ, और ऐसा स्थिति में खेती कर पूर्णा समस्या के हल करे खातिर बेहतर तरीका है नवा तकनीक, और नवा तकनीक विधि से और नवा सोच कर संगे खेती के अपनाए चाहिए।
6: और देखो, नवा तकनीक और नवा विधि से अगर हमरे खेती करब तो हमरे के बगरा मुनाफा हो सकेला है कि नहीं?
7: हाँ, कल के झारखंड कर किसान मन के कम लागत वाला और पर्यावरण अनुकूल खेती तकनीक के अपनाए चाहिए, इकर से उत्पादन बगरा होवी और किसान भाई मन के बगरा मुनाफा भी भेटाए।
6: सेंसर और डेटा कर उपयोग के करेक है, माटी और फसल हमरे के जरूरत कर हिसाब से करेक है।
7: माने कुल मिलाए के कहल जाए तो किसान भाई बहन मन के नवा सोच और नवा तकनीक कर प्रयोग करके खेती करे चाहिए
6: एकदम। और देखो, आज किसान मन के माटी कर जांच, आधुनिक सिंचाई पद्धति, मौसम कर जानकारी, ड्रोन सेंसर और डिजिटल साधन कर संगे खेती के अपनाएक है।
7: किसान भाई बहन मन नवा नवा तकनीक के अपनाऊ और अपन उपजा के बढ़ाऊ। सबसे पहले ई कार्यक्रम में हमरे का जानकारी कर सके बताए।

सबसे पहले हमरे जानकारी करब कि रबी कर मौसम में होवे वाला प्रमुख सब्जी कौन सा है, सेकर खेती कर बारे में और वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे करल जाए सेकर बारे में इके बता।

0: खेत की जुताई करना है उसमें खाद एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करके वो खेत तैयार कर लें। मिट्टी की गहरी जुताई तथा जीवांश खाद का प्रयोग अवश्य करें। पहला जुताई डिस्क हैरो से तथा दो तीन जुताई कल्टीवेटर से करके मिट्टी भुरभुरी बना दें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगावें।
1: जी, झारखंड राज्य में जो सब्जी का उत्पादन हमारे किसान भाई करते हैं उनमें से प्रमुख सब्जी कौन कौन से हैं?
0: सबसे प्रमुख सब्जी आलू है जो रवि मौसम में भी उगाया जाता है और झारखंड के कई जिलों में रवि सीजन के दौरान आलू की बड़ी पैमाने पर खेती की जाती है। हरी मटर यह ठंड के मौसम की प्रमुख फसल है जिसे झारखंड की मिट्टी और जलवायु में आसानी से उगाया जाता है। फूलगोभी और पत्ता गोभी शीतकालीन सब्जियां के तौर पर यह राज्य के ग्रामीण और मैदानी इलाकों में प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। इसके बाद जो है वो गाजर, मूली और शलजम। जड़ वाली ये सभी सब्जियां ठंड के समय झारखंड के खेतों में उगाई जाती है। पालक और मेथी पत्तेदार हरी सब्जियां कम समय में तैयार होने के कारण रबी सीजन में काफ़ी लोकप्रिय है। बैंगन रबी और सर्द मौसम में बैंगन की फसल की बम्पर पैदावार होती है।
1: जी, तो अभी आपने आलू का जिक्र किया।
0: जी,
1: तो आलू ठंड के मौसम की फसल तो है और अधिक उपज के लिए वैज्ञानिक तरीके से हमारे किसान भाई आलू की खेती कैसे करें?
0: सबसे पहले तो मिट्टी का चुनाव जो है वो जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी उपयुक्त है जिसमें जैविक पदार्थ की बहुलता होना चाहिए। इसकी किस्म जो है वो कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी ये 80 से 90 दिनों का फसल है। इसको आगाज किस्म कहते हैं। फिर से किसान भाई को बता दें, कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी ये आगाज किस्म की फसल है। कुफरी कंचन, कुफरी बहार, कुफरी आनंद, कुफरी पुष्कर ये 90 से 110 दिनों का फसल है। ये मध्यम प्रभेद का है। कुफरी गिरिराज और कुफरी सुंदरी ये 110 दिनों से अधिक पिछात प्रभेद है। कृषि कार्य जो है सबसे पहले किसान भाई करें और एक एकड़ में 40 क्विंटल गोबर की सरी खाद डाल दें और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर का प्रथम पखवाड़ा जो है इसमें आलू का बुआई जरूर कर दें।
1: जी,
0: और इसका जो बीज जो है 25-30 ग्राम आकार के अंकुरित आलू कंद का 10 से 12 क्विंटल एक एकड़ में डालें। कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें और कतार से कतार जो है ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आलू को लगावें। आलू रोपाई के 4-5 दिन बाद पहली सिंचाई कर दें एवं उसके बाद प्रत्येक 8-10 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। किसान भाई मिट्टी जरूर चढ़ावें। आलू की खेती में रोपाई के 25-30 दिन बाद मिट्टी को भुरभुरा कर 65 किलो यूरिया मिलाकर एक एकड़ आलू के फसल में डालें। बोने के समय आलू के खेत में 65 किलो यूरिया, 68 किलोग्राम DAP एवं 80 किलो MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ डालें। उसके अलावा 9 किलो गंधक प्रति एकड़ डालना चाहिए।
1: जी, आपने तो अभी बता दी आलू लगाने की विधि के बारे में।
0: जी,
1: और खाद का प्रबंधन कैसे करें इसके बारे में। किसान भाई तो आलू की खेती कर देंगे लेकिन इसमें कीट पतंगों का प्रकोप होता है, कीट एवं रोगों का प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करेंगे?
0: इसमें आलू के पौधों में मुख्य रूप से लाही नाम का कीट जो है ये लगता है जो पत्तियों का रस चूसता है। यह कीट रोग फैलाने में भी सहायता करता है। इसका नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस 50 EC
1: जी
0: 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ या इमिडाक्लोप्रिड 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ का छिड़काव

0: करना चाहिए।
1: जी
0: आलू में रोग दो तरह का आता है प्रमुख, एक आता है अगेती अंगमारी जिसमें पत्तियां पर छोटे छोटे फीके भूरे चमकदार धब्बे बनते हैं, नीचे वाली पत्तियां संक्रमित होती है जहां से रोग ऊपर की ओर बढ़ता है। सूखे मौसम में धब्बे कड़े हो जाते हैं एवं पत्तियां सिकुड़कर गिर जाती है। पछेती अंगमारी में पत्तियां पर किनारे वाले भाग पर भूरे धब्बे शुरू होकर पौधों के अन्य भागों पर फैल जाते हैं, पौधों का संपूर्ण भाग नष्ट हो जाता है। इसका प्रबंधन इस तरह से किसान भाई करें कि बोने से पहले आलू के बीज को मेटालोक्सिन नामक फफूंदी नाशक की 10 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर उसमें बीजों को आधे घंटा डुबाकर उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर बुआई करें। इससे पछेती अंगमारी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगेती अंगमारी रोग में मैंकोजेब 75% 3 ग्राम प्रति किलो बीज 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ पत्तियां पर छिड़काव करें। यह दोनों अगेती और पछेती दोनों अंगमारी को रोक सकता है।
1: जी ते तो हो गई आलू की खेती के बारे में।
0: जी
1: अब हमारे किसान भाइयों को मटर की खेती के बारे में बताएं कि झारखंड में ठंडे के मौसम में मटर एक प्रमुख सब्जी एवं सलाद में लोकप्रिय रहा है, तो वैज्ञानिक खेती से हमारे किसान भाई इसकी खेती कैसे करें?
0: झारखंड में तो किसान भाई सितंबर से ही मटर का बीज बो रहे हैं।
1: जी जी
0: लेकिन इसको नवंबर तक किसान भाई बोएंगे। मिट्टी का चुनाव इस तरह से करें कि जहां अम्लीय मिट्टी है वहां एक महीना पहले चूना का भुड़काव करें। मिट्टी अच्छी तरह जल निकास वाली होनी चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा 35 से 40 किलो एक एकड़ में डालें। बुआई से पहले बीजों को फफूंद नाशक या ट्राइकोडर्मा से उपचारित जरूर करें। मटर के बीज को कतार बनाकर खेत में सीधी बुआई करें। मटर के बीज को एक पौधा से दूसरा पौधा 6 से 10 सेंटीमीटर पर और एक कतार से दूसरी कतार 30 से 45 सेंटीमीटर पर रखें। मटर की किस्म अगात के लिए आरकेल अभी भी किसान भाइयों के बीच में लोकप्रिय है, लेकिन मध्यम के लिए आजाद, पी, पूषा प्रगति, काशी नंदिनी और सलाद एवं सैंडविच के लिए स्वर्ण तृप्ति बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है।
1: जी
0: खाद एवं उर्वरक जो है वो मटर में गोबर खाद 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ डालना चाहिए, यूरिया 35 किलो, एसफूर एसएसपी 200 किलो और एमओपी 25 किलो प्रति एकड़ डालें।
1: जी अब हमारे किसान भाइयों को इसके सिंचाई का प्रबंधन के बारे में बताएं।
0: देखिए बीज बोने के 15 दिनों के बाद पहली हल्की सिंचाई करें।
1: जी
0: मटर में बहुत पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फूल लगने के समय, दाना आने के समय और दाना भरने के समय हल्की सिंचाई जरूर करें।
1: इसमें हमारे किसान भाई रोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए मटर का के दाना पर में एफिड का आक्रमण होता है।
1: जी
0: और पत्ता पीला हो जाता है। रोगर नाम का दवा 30 ईसी 400 ml 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15 दिनों के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। भुआ पिल्लू जो है ये इसके पौर में घुसकर मटर के दाना को खा जाता है, तो इसका जो है नियंत्रण सुबह में हाथ से भुआ पिल्लू को पत्ता के पीछे छिपा रहता है उसको चुन करके उसको इकट्ठा करके और खेत के बाहर उसको फेंक दें।
1: जी डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को आलू और मटर, रबी के मौसम में आलू और मटर की सब्जियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी धन्यवाद।
2: तो एखन हमरे मने जानकारी कर ली रबी के मौसम में होए वाला जे प्रमुख सब्जी है इनकर वैज्ञानिक विधि कातर करल जाला सेकर बारे में नगद जानकारी।

0: बड़ा बढ़िया गीत रहे, मैं एकदम मन के रिझाए दिलक। गीत कर बाद जो है कुछ और जानकारी करे के चाहिए
1: तो हमरे किसान से करल बैठ के सुनब। और किसान है अल्बिना एका जी की खेती कर बारे में बातचीत कर रहे हैं और इनकर से गोठिया है हमरे कृष्णगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: किसान साथियों नमस्कार, हम किसान वाणी कार्यक्रम में किसी न किसी किसान को

0: आपसे मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक महिला किसान, अलविना एक्का। अलविना जी, स्वागत है हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में आपका। जोहार।
1: जोहार।
0: अलविना जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं?
1: मैं रहने वाली नामकुम के प्रखंड खरसीदाग।
0: खरसीदाग के रहने वाली हैं। आप अभी क्या कर रही हैं?
1: अभी मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, इसके अलावा औषधीय पौधा लगाती हूँ, नर्सरी करती हूँ, और अब औषधीय से मैं अपना दवा बनाती हूँ, जैसे 33 प्रकार बीमारी का तेल बनाती हूँ।
0: आपको ये सब खेती बाड़ी की प्रेरणा कहाँ से मिली?
1: ये सब प्रेरणा मुझको मिला ICR पलांडू से। ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेके मैं खेती बाड़ी तकनीकी करना सीखी। जैसे तकनीकी में मैं मशरूम का खेती फर्स्टिंग में की, मशरूम से दुगुना मुझको मुनाफा मिला। इसके अलावा मैं उसका बरी बनाती हूँ और अचार भी बनाती हूँ
0: मशरूम की। और क्या क्या खेती किए हैं?
1: अभी मैं लाह की भी खेती की हूँ।
0: और आपने बताया कि मशरूम का खेती करते हैं, मशरूम की खेती के लिए आप क्या क्या व्यवस्था किए हुए हैं?
1: मशरूम की खेती के लिए एक रूम तैयार की हूँ, उसके बाद मैं वहाँ खाली रूम होना चाहिए और कुटी रहना चाहिए, डेली का 100 बैग बनाती हूँ मशरूम।
0: तो मशरूम का बीज कहाँ से आते हैं?
1: के लिए मैं बीज का डिमांड करती हूँ, ICR पलांडू से मुझको मिला है। मैं प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ, 2017 से जुड़ी हुई है, इसलिए मुझको मिलता है।
0: अच्छा, तो मशरूम का उत्पादन कितने दिन में हो जाता है?
1: 21 दिन में।
0: तो इसका खपत कैसे करते हैं आप?
1: इसका खपत हम जैसे मार्केट में ले जाते हैं, तो मार्केट में खपत नहीं हुआ, जैसे बच गया तो मैं उसको प्रोसेसिंग करती हूँ, जैसे बरी बनाती हूँ, अचार बनाती हूँ
0: मशरूम का। और मशरूम में कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं?
1: उसमें भी फंगस लगता है। फंगस से बचाने के लिए जैसे हम लोग रूम को सबसे फर्स्ट में सफाई करते हैं, सफाई के बाद ही मशरूम का पैकेट डालते हैं।
0: और आपने कहा कि औषधीय पौधों की भी खेती करती हूँ, है ना? तो औषधीय पौधे में आप कौन कौन सा औषधीय पौधों की खेती करते हैं?
1: औषधीय पौधा में मैं अश्वगंधा और जैसे धतूरा हो गया,
0: और
1: लाल मिर्च भी दवा ही है।
0: लाल मिर्च,
1: लहसुन, चिरैता, ये सब डालती हूँ।
0: जो औषधीय पौधों की खेती जो आप कर रहे हैं, तो ये औषधीय पौधों की खेती किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा एक एक करके बताइए।
1: जैसे मैं नर्सरी करती हूँ तो एक एक बीज डालती हूँ, जैसे पीपी बैग होता है ना, छोटा वाला, काला वाला रहता है, उसी में मैं डालती हूँ, और औषधीय पौधा भी बेचती हूँ और दवा भी बनाती हूँ।
0: अश्वगंधा के पौधों से कौन कौन सी बीमारियों की दवाई?
1: अश्वगंधक जैसे वो वाला दवा, जैसे शरीर कमजोरी हो गया है ना, हम लोग बहुत सा विटामिन खाते हैं, उसका पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास दूध में आप उसको डाल के पी जाइए, वो ताकत के लिए अच्छी होती है।
0: और जो आप बोले कि लाल मिर्च से भी हम दवा बनाते हैं, तो लाल मिर्च से कौन सी दवा आप बनाते हैं?
1: जैसे लाल मिर्च और लहसुन से जैसे बीमारी का मिश्रण करके, जैसे लकवा हो गया, साइटिका हो गया, कान दर्द, नस का जो भी प्रॉब्लम है, सारा चीज उसमें खत्म हो जा रहा है, और बहुत दूर दूर तक मेरा दवा जा रहा है, पूरा झारखंड में मेरा दवा जा रहा है।
0: अच्छा, तो ये लहसुन और लाल मिर्च के बारे में आप बात की है ना, और इसके बाद में धतूरा और एरंडी से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है?
1: सबका मिश्रण करते हैं, जैसे धतूरा हो गया, लाल मिर्च हो गया, एरंडी हो गया, सबको मिश्रण करके बनाते हैं, प्योर सरसों तेल से बनाते हैं। ये नहीं कि हम दुकान से लाएं और बनाएं, वैसा नहीं है।
0: ये जो आप मिश्रण करके बनाते हैं, तो ये कौन कौन सी बीमारी में काम करती है?
1: लकवा हो गया, साइटिका, कान दर्द, बवासीर हो गया, खूनी वाला हो चाहे मांस वाला हो, दोनों हो, उसमें लगाना केवल है, कुछ खाना पीना नहीं है, केवल लगाना है।
0: ये सब जो औषधीय पौधों की जो खेती कर रहे हैं, और अपने से दवा बनाते हैं ना?
1: अपने से दवा बनाते हैं।
0: तो इसका खपत कैसे करते हैं?
1: इसका खपत सबसे फर्स्ट में तो मैं शुरुआत में बनाई, पहले मैं पड़ोस को दी, पड़ोस वाले लोग ठीक हो गए, तो उसके बाद मैं प्रखंड स्तर पर मैं स्टॉल डाली, बिना ये लेबल का डाली, तो मेरा बिक्री अच्छा से हो गया। अच्छा से हो गया तो मुझको लगन लगा कि नहीं, मुझको तेल बनाना है और लोगों का सेवा करना है। इसके अलावा मैं केश पोषक तत्व भी बनाती हूँ, शैम्पू।

0: बनाती हूँ, प्रखंड में ही दी मैं, नामकुम प्रखंड में ही, लेकिन ज्यादातर जेंट्स लोग ही लेते हैं। अच्छा। बोलते हैं टकला और है मैडम मुझको दीजिए, और बहुत दूर तक जा रहा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये सब पूरा जा रहा है, इसके अलावा हैदराबाद पटना बंगलोर यहाँ तक भी जा रहा है, ऑनलाइन भी मैं भेजती हूँ दवा।
1: अच्छा, तो ये सब दवाइयों को जैसे ऑनलाइन आप भेजते हैं तो इनका व्यवस्था कैसे किए हैं?
0: इनके व्यवस्था मैं ICR पलांडू से संपर्क रखती हूँ।
1: अच्छा, हमारे किसान भाइयों का ये बताइए कि पुराने परंपरा से जो खेती करते हैं थे और अब की खेती में, ये दोनों में क्या अंतर है?
0: दोनों में यही अंतर है, जैसे अभी रासायनिक और ऑर्गेनिक खेती, एक तरफ मैं रासायनिक करती हूँ एक तरफ ऑर्गेनिक खेती करती हूँ
1: जी,
0: दोनों में फर्क पड़ता है। इसलिए फर्क पड़ता है कि रासायनिक का कीमत कम मिलता है और ऑर्गेनिक खेती में उसको ज्यादा मिलता है। जैसे धान की खेती भी करती हूँ तो मैं जीराफुल चावल डालती हूँ, जीराफुल चावल अपने से बनाती हूँ और 100 रुपया केजी बेचती हूँ। जैसे मड़ुआ डालती हूँ, मड़ुआ का मैं लड्डू बनाती हूँ, बिस्कुट बनाती हूँ, नीमकी भी बनाती हूँ, प्रोसेसिंग करके बनाती हूँ, अच्छा मार्केटिंग मेरा आता है।
1: तो मड़ुआ बिस्किट और ये जो लड्डू बनाते हैं तो बहुत पौष्टिकारक होता है ना?
0: हाँ, जैसे केचुआ खाद भी बनाती हूँ मैं।
1: अच्छा,
0: नाडेप भी है मेरे पास, बीज उपचार के लिए जीवा अमृत घनजीवा अमृत सारा चीज मैं बनाती हूँ मैं।
1: तो अलमीना जी, आपको हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में आने के लिए और किसानों को बहुत अच्छी अच्छी बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: धन्यवाद सर।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक।
4: ई कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: और प्रस्तुति रहे प्रभु शरणकर। तो किसान भाई बहन मने अवरावन कर संगे कृषि जीवन पौराणिक संगे
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डालगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सभा सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। किसान भाई, गेहूं की खेती करने के लिए उचित जलवायु, उन्नत किस्मों का चयन, सही समय पर बुआई और संतुलित प्रबंधन जरूरी है। तो गेहूं के लिए समशीतोष्ण जलवायु अच्छी होती है। बुआई के समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और पकने के समय गर्म व शुष्क मौसम उपयुक्त रहता है। अगर हम इसके मिट्टी की बात करें किसान भाई, तो इसके लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जुताई की अगर हम बात करें किसान भाई, जो खेत की तैयारी होती है

पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या पाटा लगाकर खेत को समतल और भुरभुरा बना लें। समय पर बुआई, नवंबर के पहले पखवाड़े तक कर लें, और पछेती बुआई तो हमारे किसान भाई यहाँ दिसंबर तक भी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाइयों का खेत खाली नहीं हो पाता है, क्योंकि धान वो लेट से लगाते हैं तो उसमें उनको पछेती बुआई की आवश्यकता पड़ती है। जो किसान भाई समय से धान लगाते हैं वो लगा सकते हैं नवंबर के प्रथम पखवाड़े में। अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो सामान्य बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयोग आप करें। फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। एजेटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर का उपयोग भी फायदेमंद होता है। और खाद और उर्वरक की बात हम करें, किसान भाई करें तो अगर हम जैविक खाद अगर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो उसके लिए 3 से 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट मिलाएं। अगर हम रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो सिंचाई क्षेत्रों में सामान्यतः 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस जिसे हम लोग डीएपी भी बोलते हैं, और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। डीएपी की पूरी मात्रा बुआई के समय दें, जबकि नाइट्रोजन जो है वह सिंचाई के बाद विभाजित करके 2 बार करके दें। गेहूं के फसल में कुल 4 से 6 सिंचाइयां महत्वपूर्ण होती हैं। पहला जो है जब कल्ला निकलते समय यानी बुआई के 20 से 25 दिन के बाद, दूसरा जब बालियां निकलने का समय होता है 40 से 45 दिन के बाद, और तीसरा फूल आते समय जब पौधा 60 से 65 दिन का हो जाता है, और चौथा दाना जब उसमें भरने का समय होता है उस समय, और आवश्यकता अनुसार अगर आप देखें कि अगर उसको सिंचाई की आवश्यकता है तो 2 सिंचाई मतलब 4 से 6 सिंचाई, वो भूमि पर भी निर्भर करता है। 4 से 6 सिंचाई गेहूं की खेती के लिए पर्याप्त होता है। अगर हम खरपतवार की बात करें तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उचित शाकनाशी जैसे 2,4-D का छिड़काव कृषि विशेषज्ञ की सलाह से करें। कटाई जब दाना सख्त हो जाए और नमी की मात्रा 20% से कम बचे तब फसल की कटाई करें। भंडारण के समय दानों में नमी 10-12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका भी किसान भाई ध्यान रखें। क्योंकि हमारे किसान भाई धान की कटाई के बाद इसकी तैयारी प्रारंभ करें और समय पर गेहूं की बुआई करें ताकि आप उससे बेहतर उत्पादन ले सकें। तो ये तो बात हुई गेहूं की उन्नत खेती के बारे में। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जब प्रभेद की अगर बात आती है किसान भाई तो आप उन्नत प्रभेद का चुनाव करें, तभी आप बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता। बत्तख चूजा वितरण एवं बकरा विकास योजना भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।

और संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें होंगी मुख्यमंत्री पशुधन योजना की, और

0: जानकारी देने के लिए आज आपके साथ हैं लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हमारे ग्रामीण भाइयों को जो पशु पालक भाई लोग हैं वो योजनाओं का भरपूर लाभ उठाते हैं और उन्हें प्रेरित करने की भी हमें आवश्यकता है ताकि कोई भी पशुपालक भाई नहीं छूट पाएँ, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह पाएँ। और विशेषकर मुख्यमंत्री पशुधन योजना जो चलाई जा रही है सरकार की ओर से, इसके बारे में हमारे ग्रामीण भाइयों को जानकारी साझा करें।
1: ग्रामीण भाइयों को मैं ये झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनको घर में ही रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है
0: जी।
1: ये योजना 19-20 से चलाया जा रहा है। ये 2025-26 में अभी कुछ योजना में सुधार किया गया है। पहला सुधार तो ये है कि बकरा विकास योजना जो है वो पहले 4 बकरी 1 बकरा प्रदान किया जा रहा था, अब जो है ये 8 बकरी और 2 बकरा प्रदान किया जा रहा है। दूसरा इसमें सुधार हुआ है कि पहले बतख चूजा वितरण योजना 15 चूजे 15 दिनों के दिए जा रहे थे, अब 30 चूजे 15 दिनों के प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना में बकरा विकास योजना ये 8 बकरी और 2 बकरे के लिए इसका लागत 49,600 रुपये रखा गया है। इसमें दो तरह का अनुदान हम लोग किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं, एक 75% अनुदान और कुछ लोगों को 90% अनुदान। अब किसान भाइयों को ये बात दिमाग में आएगी कि 90 किनको मिलेगा अनुदान और 75 किनको मिलेगा
0: जी, जी।
1: तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति असहाय विधवा औरतें दिव्यांग या निसंतान दंपति जिनकी उम्र कम से कम 50 वर्ष हो गई हो इन सभी को हम 90% अनुदान प्रदान करेंगे और शेष सभी लाभकों को 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
0: अच्छा अच्छा।
1: अब इनमें खास करके लातेहार जिले में आदिम जनजाति के जो परिवार हैं जिनकी संख्या कम हो रही है उनके कारण वो हमारे विकास योजनाओं के फोकल पॉइंट में रहते हैं, तो उनको हम प्रथम और खासकर विधवा और विकलांग को ये प्राथमिकता में रखते हुए इनका हम 90% में सिलेक्शन करते हैं।
0: अच्छा।
1: ये आप जानना चाहें कि 49,600 में 90% में सरकार जो है उनको 44,640 रुपये अनुदान देगी और उन्हें 4,960 रुपये लगाना पड़ेगा। इसी तरह से 75% अनुदान में सरकार उन्हें 37,200 रुपये देगी और उन्हें 12,400 रुपये लाभुक अनुदान लगाना पड़ेगा। ये जो पैसे हैं वो किसी को नहीं देने हैं, यह स्क्रू खाता जो है आपके संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी बताएंगे कि आपको किस बैंक में खाता खुलवाना है।
0: अच्छा।
1: जहां पर आप खाता खुलवाएंगे उस खाते में आप जब ये अपना लाभुक अनुदान जमा करें तत्पश्चात सरकारी अनुदान उसमें डाला जाएगा। इसी तरह से सुकर विकास योजना ये 57,800 रुपये की है, इसमें भी हम 90% के लिए जो क्राइटेरिया है वही रहेगा और इसमें 90% अनुदान में किसान भाइयों को मात्र 5,780 रुपये जमा करने होंगे जबकि लाभुक को सरकारी अनुदान 52,020 रुपये प्राप्त होंगे। इसी तरह से 75% अनुदान में सरकार के द्वारा उन्हें 43,350 रुपये उनके खाते में दिया जाएगा और 14,450 रुपये लाभुक अनुदान के तौर पर उनको खाते में जमा करना होगा। सुकर विकास योजना में मनरेगा के द्वारा इन्हें शेड उपलब्ध कराएगा 821 स्क्वायर फीट का जिसकी प्रस्तावित कीमत लगभग 2,21,000 रुपये है। इसके लिए पशुपालकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, ये मनरेगा के द्वारा उनको शेड सरकार के द्वारा बनाकर खुद दी जाएगी
0: जी।
1: इसी तरह से तीसरी बड़ी योजना है 400 बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना। ये बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना अंडे देने वाली मुर्गी है, इसमें 400 अंडे देने वाले चूजे और उसके 4 महीने की भोजन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी जिसका कीमत होगा 1,18,200 रुपये। इस में अगर हम 90% में किसी लाभुक का हम आवेदन का चयन करते हैं तो उन्हें मात्र 11,820 रुपये लाभुक अनुदान के तौर पर खाते में जमा करना होगा जबकि उन्हें सरकार के द्वारा 1,06,380 रुपये उनके खाते में डाला जाएगा। इसी तरह से 75% अनुदान में लाभुक अनुदान के तौर पर 29,550 रुपये उनको अपने स्क्रू खाता में डालना होगा और उन्हें सरकार के द्वारा 88,650 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह से हमारी आगे की योजना है ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना।
0: अच्छा।
1: किसान भाई ब्रायलर मतलब शायद ना समझ पाए तो इसे अगर हिंदी में हम कहें तो मांस वाली मुर्गी, जो आए दिन प्रखंड मुख्यालय में आप सफेद मुर्गियों को बेचते हुए देख रहे हैं जिन्हें ब्रायलर कहते हैं। इसमें आपको 500 चूजा और एक महीने का भोजन उसका दिया जाएगा। इसका लागत करीब 67,500 रुपये है। इसमें अगर हम 90% में किसी का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, तो उन्हें हम 6,750 रुपये लाभुक अंशदान के तौर पर जमा कराना पड़ेगा और 60,750 रुपये सरकारी अनुदान उनके खाते में दिया जाएगा।
0: अच्छा।
1: इसी तरह से 75% अगर अनुदान पर उन्हें चयन किया गया है तो उन्हें 16,875 रुपये जमा करना पड़ेगा और सरकारी अनुदान उन्हें 50,625 रुपये उनके खाते में दिया जाएगा
0: जी।
1: इसके बाद है बतख चूजा वितरण योजना। ये 30 चूजे अब 15 दिनों के प्रदान किए जाएंगे। इसका इकाई लागत मूल्य रखा गया है 3400 रुपये। इसमें अगर किसान भाई को 90% में चयन किया जाता है तो उन्हें मात्र 340 रुपये खाता खुलवा कर जमा करना पड़ेगा और सरकार के द्वारा सरकारी अनुदान की राशि 3060 रुपये उनके खाता में जमा किया जाएगा। इसी तरह से 75% अनुदान में लाभुक अनुदान के तौर पर 850 रुपये जमा करना पड़ेगा जबकि सरकारी अनुदान की राशि उनके लिए 2,550 रुपये उनके खाते में दी जाएगी
0: जी।
1: इसी तरह से हमारे दो गाय की भी योजना है। दो गाय की योजना पूरी तरह से महिलाओं की योजना है। इसमें पुरुष आवेदनकर्ता नहीं होंगे।
0: अच्छा।
1: इसमें किन महिलाओं को 90 दिया जाए, किन महिलाओं को 75 दिया जाए, तो इसको स्पष्ट तौर पर किसान भाई सुन लें। वैसी महिलाएं जो आपदा से प्रभावित हैं, तो आपदा में आता है वज्रपात, सांप काटना, हाथी के द्वारा दुर्घटना, नदी में डूबना, ये आपदा आता है। अगर इससे परिवार प्रभावित है तो उस महिला को इसका लाभ 90% अनुदान के साथ दिया जाएगा,
0: चाहे वो किसी भी जाति की हो।
1: दूसरा कि सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला है उसे भी ये प्रदान किया जाएगा। तीसरा, परित्यक्त महिला को भी ये लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ दिव्यांग महिला को भी 90% अनुदान दिया जाएगा। शेष सभी महिलाओं को 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह दो गाय की योजना 1,35,050 रुपये की है। इन्हें सरकार के द्वारा 90% अनुदान में 1,21,545 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे और उन महिलाओं को 10% में लाभुक अंशदान के तौर पर 13,505 रुपये खाते में जमा करना होगा। शेष सभी महिला लाभुकों को 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा जिसमें उन्हें 1,01,287 रुपये 50 पैसे उनके खाते में दिए जाएंगे और उन्हें 33,762 रुपये 50 पैसा लाभुक अंशदान के तौर पर अपने स्कूल खाता में जमा करना होगा। इसके बाद हमारे पास योजना है 5 दुधारू गाय की योजना। ये योजना जो है 3,37,625 रुपये की है। यहाँ पर हमारा जो अनुदान की राशि है वो 75% और 50% है। 75% सिर्फ उन लाभुकों के लिए है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूध सहकारी समिति के सदस्य हैं।
0: अच्छा।
1: उन्हें 75% का लाभ दिया जाएगा। शेष सभी लाभुकों को 50% का लाभ दिया जाएगा। ये 5 गाय की योजना 3,37,625 रुपये की है। अगर इन्हें 75% अनुदान प्रदान किया जाता है तो इन्हें सरकारी अनुदान की राशि होगी 2,53,218 रुपये 50 पैसे और उन्हें खाते में जमा कराना होगा 84,406 रुपये 25 पैसा। इसी तरह से अगर 50% में दिलवाते हैं तो सीधा सीधी है 3,37,625 रुपये का आधा 1,68,812 रुपये 50 पैसे होगा और इतनी ही रकम उनको लाभुक अनुदान के तौर पर जमा करना होगा
0: जी।
1: 10 दुधारू गाय की योजना 6,75,250 रुपये की है। इसमें अगर उन्हें 75% अनुदान प्रदान किया जाता है तो उन्हें लगभग 5,06,437 रुपये अनुदान के तौर पर प्रदान होगा और 25% उन्हें लगाना पड़ेगा 1,68,812 रुपये।
0: अच्छा।
1: इसी तरह से जो 50% है तो सीधी सी बात है कि 6,75,250 का आधा लगभग हो जाता है 3,37,625 रुपया। इतना ही सरकार अनुदान देगी, इतना ही उनको जमा कराना पड़ेगा
0: जी।
1: इन सभी योजनाओं में एक और है कि सभी का बीमा कराया जाता है। इसमें बीमा भी रहेगा। बीमा में है कि जब भी पशु आपको प्राप्त होते हैं तो 15 दिनों के बाद ही बीमा का आप लाभ ले सकते हैं, मतलब कि प्रथम 15 दिन अगर पशु की मृत्यु होती है तो उसका लाभ नहीं मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो किसान भाइयों को ये कि, और दूसरी बात

0: कि जो बीमाकृत पशु हैं उसका इलाज जो आपके प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी हैं या भ्रमणशील पशु पदाधिकारी हैं या भी कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनसे आप इलाज कराएं, और तत्पश्चात अगर उस पशु की मृत्यु होती है तो बीमा का जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपके पास है उसमें नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पर कॉल करके बीमा कंपनी को सूचित कर दें कि अमुक पशु का बीमा या पक्षी का बीमा आपके द्वारा किया गया था, उसकी मृत्यु हो गई है, अगर आप जांच करना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर आप जांच कर लें। इसी के साथ यही सूचना अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है या प्रखंड पशुपालन कार्यालय है वहां पर भी सूचना दें पशु चिकित्सक को, ताकि उनके पशु का इलाज के बाद जो मृत्यु के कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकें। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको प्राप्त हो जाता है तब आप जो है उसके साथ बीमा कंपनी दो पेज का एक फॉर्म देती है, उसमें एक में आप साइन करेंगे, एक में आपके डॉक्टर साहब साइन करेंगे, और अपना आधार कार्ड और बचत खाता जो आपका है जिसमें आप पैसा बीमा का लाभ लेना चाहते हैं
1: उसको
0: इतने कागज को लगा कर करके अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी को या प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को दे देंगे तो आपको उसका लाभ आपके खाते में आ जाएगा
1: जी। अब प्रश्न उठता है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे ग्रामीण भाई किस तरह आवेदन कैसे करेंगे?
0: आवेदन के लिए है कि झारखंड में आपके पलामू और गढ़वा ये दोनों आदिवासी जिला नहीं है, लातेहार आदिवासी जिला है। पलामू और गढ़वा में आप अपने मुखिया से संपर्क करें, वो ग्राम सभा करेंगे, ग्राम सभा में आप उपस्थित हों, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, उसके उपरांत जो भी योजना है उस योजना में आप मसलन एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि बकरा विकास योजना और बतख चूजा वितरण योजना में शेड नहीं है, तो आप सीधा लिखिए कि बकरा विकास योजना के लिए निम्नांकित लाभकों का चयन किया जाता है, उसमें नाम आपका होना चाहिए। लेकिन जो योजनाएं शेड वाली हैं मसलन कि सुकर विकास योजना में शेड है, 400 बैकयार्ड कुकुट पालन योजना में शेड है, ब्रायलर कुकुट पालन योजना में शेड है, इन तीनों योजनाओं में या दो गाय पाँच गाय और दस गाय की योजना में भी शेड है, तो इन शेड वाली योजनाओं में आप स्पष्ट इंगित करें कि किन लाभुकों को शेड की जरूरत है, किन लाभुकों को शेड की जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है उसमें लिखिए कि मतलब उदाहरण तो 400 बैकयार्ड कुकुट पालन योजना शेड सही के लिए निम्नांकित चयन किया जाता है, शेष में लिख दीजिए कि इनको शेड पूर्व में प्राप्त है इसलिए इन्हें शेड की जरूरत नहीं है, ताकि उसके हिसाब से शेड का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को प्रदान किया जा सके।
1: जी जी हाँ, आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी
0: प्रखंड, एक मिनट बढ़ाना पड़ेगा इसमें,
1: प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। अब बात करेंगे जो हमारे पशुधन है उन्हें हमारे किसान भाई किस तरह से किसी भी तरह की बीमारी हो उससे पहले वो बचाव का तरीका जाने ताकि बीमारी की रोकथाम की जा सके। सबसे पहले कि समय समय पर स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं। पशुओं में बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल पशु चिकित्सक से सलाह लें और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसका उपचार कराएं। बीमारी जैसे ही प्रारंभ होती है वैसे ही आप उसका उपचार कराएं, विलंब ना करें। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें, उनका जो गौशाला है वो तो साफ सफाई का आप पूरा ध्यान रखें। मच्छर मक्खी एवं चमोकन के नियंत्रण हेतु कारगर उपाय करें। गौशाला के पास जल जमाव नहीं होने दें। नालियों को साफ रखें। बाह्य परजीवी नियंत्रण हेतु दवा का उपयोग करें। जो आपके संक्रमित हैं, जो पशु बीमार है उसको बाहर चारागाह में चरने हेतु न भेजें। अगर जो पशु बीमार है उसका आप क्रय विक्रय भी ना करें। गौशाला में आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रखें।

जला दें, जब पशु स्वस्थ हो जाए तो उसे हटा दें, ताकि उसके जो है कीटाणु अन्य पशुओं को न लग सके। तो ये तो बात हुई किस तरह से अपने पशु का बीमार होने से बचाव कर सकते हैं। और जब पशु आपका बीमार होता है तो निश्चित तौर पर विलंब ना करें। ऐसा अक्सर देखा गया है कि किसान भाई विलंब कर देते हैं।

अत्यंत आवश्यक है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाई घड़ी इशारा कर रही है, समय चलने को है, तो चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दें। आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह की आर्द्रता रही 85%, जबकि शाम की आर्द्रता 79% दर्ज की गई। तो मौसम संबंधी इसी सूचना के साथ ही हमारा आज का ग्रामीण सभा कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए, तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
7: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
6: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
7: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए
6: एनएसबी कराने?
7: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
9: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
8: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
9: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
8: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
9: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
9: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
8: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
9: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
8: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
9: और लड़के की 21 वर्ष है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदी होते हैं। हमारी पूरी
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सकों से करुणा और सेवा भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। कहा, चिकित्सक दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा से पीछे न हटें। केंद्र सरकार ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन के साथ छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश से जुड़े प्रस्ताव को दी मंजूरी। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 6000 पुलिस जवान तैनात, 5000 होमगार्ड के साथ केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। मौसम विभाग ने झारखंड में 9 अक्टूबर तक मेघगर्जन और तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश का जताया अनुमान। 10 अक्टूबर से मौसम साफ होने की उम्मीद। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में होने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां अंतिम चरण में। दोनों टीमें कल पहुंचेंगी रांची। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से चिकित्सा पेशे को केवल आजीविका का साधन न मानकर सेवा और करुणा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़े और आने वाली पीढ़ियां उनके उदाहरण का अनुसरण करें।
1: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लॉजिस्टिक्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर में राजमार्ग, रेलवे लाइन, जलमार्ग, हवाई अड्डे और नए बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार से झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में टीम गठित करने की मांग की है। मेदिनीनगर स्थित सर्किट

0: हाउस में उन्होंने कहा कि टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो भाषा के क्षेत्र में काम कर चुके हों।
1: जो भाषाविद हैं, जिन्होंने भाषा के क्षेत्र में कई रिसर्च किए हों, उनके नेतृत्व में एक टीम गठन हो और उनको ये कहे कि आप झारखंड का भ्रमण करें, गांव तक जाएं, अंतिम फायदान तक जाएं और वहां के लोगों से बातचीत करें कि वो किस भाषा में बात करते हैं और उसके अनुसार एक सकारात्मक रिपोर्ट सरकार के सामने वो प्रस्तुत करें और उस रिपोर्ट के आलोक में सरकार ये तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन करे ताकि लोगों में उनकी जो भाषा है वो पहचान उनकी कायम रहे।
0: इसके साथ ही विधायक ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। राज्य भर में 6000 से अधिक पुलिस जवान और 5000 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहार के दौरान अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। शांति समितियों को भी सक्रिय किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी। पहले यह बैठक 12 सितंबर को तय थी, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और अन्य कारणों से 7 अक्टूबर कर दी गई थी। अब यह बैठक 8 अक्टूबर को होगी। भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला का विषय है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस सेवा से सरकार की सैकड़ों योजनाओं से जुड़े लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नागरिकों तक आसानी से पहुँच रहे हैं।
2: कॉमन सर्विस सेंटर्स में आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज गांव के लोगों तक पहुंच रही हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स लाखों युवाओं को रोजगार का भी माध्यम बने हैं। आदिवासी क्षेत्र के नागरिक भी ये सेवाएं क्या है, ये सेवाएं कैसे ली जाती है, ये सेवा कितनी सार्थक है इसको भी जानते हैं और आज वो कॉमन सर्विस सेंटर से कमा रहे हैं।
0: डिजिटल इंडिया CSC सेवा से झारखंड के चतरा जिले में लोगों को सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं में लाभ तो मिल रहा है, साथ ही लोगों के लिए यह सेवा जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन भी बना है।
3: मेरा नाम शिवपूजन कुमार है। CSC सेंटर चलाता हूं मैं। यह सेंटर 5-6 साल से लगभग चला रहा हूं। अपने दुकान में लोगों को डिजिटल सहायता पहुंचाने का काम करता हूं और इससे मेरे परिवार की रोजी रोटी चलता है।
4: मेरा नाम मोहम्मद साहबान है। कॉमन सर्विस सेंटर ने मेरी जिंदगी को बहुत सरल बना दिया है। CSC सेंटर एक छत के नीचे एक ही सारा काम आसानी से कर देता है, चाहे पैसा ट्रांसफर करना हो या किसी बीमा भरना हो। किसी को फसल बीमा का पैसा निकलवाना है तो किसी को वृद्धा पेंशन, आम आदमी के लिए इसने काम आसान कर दिया है।
0: रामगढ़ जिले में रामगढ़ प्रखंड के दोहाकातु पंचायत क्षेत्र और संवेदनशील जनजातीय बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार, विधायक ममता देवी, उपायुक्त ऋतुराज, DDC आशीष अग्रवाल ने क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद किया तथा उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर समाधान का भरोसा दिया। धनबाद के IIT ISM में आज सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज ईस्टर्न जोन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो ने युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया।
5: सेवा फर्स्ट इनोवेशन 2026 के लिए खास करके हमारे

0: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीनी स्तर से हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं और आज सेवा संकल्प अभियान के तहत ISMIIT में इसका एक सेमिनार लगा के हम लोगों ने सारे वैसे अभ्यर्थियों से जुड़ने का प्रयास किया और उन लोगों को हम लोगों ने प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने कहा हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए।
1: और अब मौसम का हाल। झारखंड के मौसम में फिर बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। इधर राजधानी रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को JSEA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर सुरक्षा समेत सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। दोनों टीमें कल रांची पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से होटल और होटल से JSEA स्टेडियम तक खिलाड़ियों के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं। इन रूटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रामगढ़ कॉलेज में अंतर महाविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। रामगढ़ कॉलेज की टीम चैंपियन बनी, जबकि हजारीबाग की कोलंबस कॉलेज उपविजेता रहा। कॉलेज ने और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सकों से करुणा और सेवा भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। कहा, चिकित्सक दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा से पीछे न हटे। केंद्र सरकार ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन के साथ छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश से जुड़े प्रस्ताव को दी मंजूरी। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 6,000 पुलिस जवान, 5,000 होमगार्ड के साथ केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। मौसम विभाग ने झारखंड में 9 अक्टूबर तक मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश का जताया अनुमान। 10 अक्टूबर से मौसम साफ होने की उम्मीद। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को JSEA स्टेडियम में होने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां अंतिम चरण में। दोनों टीमें कल पहुंचेंगी रांची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: देश भर में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस यहां 7 अक्टूबर से वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चलाने जा रही है, जिसमें जिले के हर प्रखंड में रैलियां और सभाएं की जाएंगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक सोनाराम सिंकू ने बताया कि इस देशव्यापी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम जिला भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा।
2: SIR जब चालू हुआ तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप सब जान रहे हैं कि कितने लोगों का नाम काटा जा रहा है और दस्तावेज देने के बावजूद भी उन लोगों को दोबारा नोटिस दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरे देश में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चालू किए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये आह्वान किया है हम लोग को, चुनाव आयोग दिनेश कुमार जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं या उसको जेल की सलाखों में नहीं जाते हैं तब तक आंदोलन करना है सड़क से सदन तक, और ये जनता को भी हम लोग को जागरूक करेंगे। ये प्रखंड स्तर तक पंचायत स्तर तक ये आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। हमारे प्रदेश से भी लोग आएंगे, हर प्रखंड में हम लोग ये विरोध प्रदर्शन करेंगे कि दिनेश कुमार के विरोध में।
1: अखिल भारतीय आदिवासी गोंड समाज की ओर से पिछले दिनों जिले के मनोहरपुर में रानी दुर्गावती जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से गोंड समाज के लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीरांगना थी, लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया।
3: इतना गौरवशाली इतिहास रहा हमारा और इतिहास के पन्नों में हमारा समाज को कहीं भी स्थान नहीं मिला। अब धीरे धीरे हमारा समाज जागृत हो रहा है। रानी दुर्गावती

0: हम लोग उपलब्ध हुए हैं। रानी दुर्गावती एक स्वाभिमान मानी रानी थी, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहती थी। और आज हम रानी दुर्गावती से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि रानी दुर्गावती का जो साम्राज्य था वो इतना समृद्धशाली साम्राज्य था।
1: चक्रधरपुर रेल मंडल ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। खासकर गांधी जयंती के अवसर पर रेल क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर गांधी जी को याद किया गया। आज से ठीक 100 साल पहले गांधी जी जिले में आए थे और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। इस बात को याद करते हुए चक्रधरपुर के मंडल रेल प्रबंधक तरुण होरिया ने कहा कि यह वर्ष इस लिहाज से विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दिए हुए संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
2: आज से 100 वर्ष पहले गांधी जी उतरे थे, चक्रधरपुर शहर में आए थे, झारसुगुड़ा भी गए थे, हमारे डिवीजन में आए थे 1926 में, और अभी इस साल 2026 है, तो ये साल बहुत स्पेशल है। गांधी जी के आए 100 साल हो गए, तो गांधी जी का संदेश फैलाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए कि हमको सफाई रखनी चाहिए, आपस में भाईचारा रखना चाहिए।
1: स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान जिले के अन्य स्थानों पर भी साफ सफाई का अभियान चलाया गया। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
3: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

तेरा सवा सत्यानाश। अरे जेनी, अरे लड़की, ये तूने क्या किया? अरे मुझ लड़के को मझधार में तनहा छोड़कर तू अकेली किनारे पर उछल पड़ी। बेवफा, बेरहम, बेमुरव्वत, तेरी ये हिम्मत।

छोड़ मेरा रास्ता दुख से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं।

0: कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
2: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और मैं यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
3: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक

0: अमानत तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9।

0: It's Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Belgian-born scientist Francis Haugen wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असगर अली। हुकूमत ने कसीर रुखी मंसूबा बंदी को बरुए कार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मरबूत अथॉरिटी कायम करने को मंजूरी दी है। उसने छोटे और मतवस्त कारोबारों के तरक्याती फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों की ये कहते हुए सिताइश की है कि इनसे MSME शोबे को खास तौर से फरोग हासिल होगा। मरकजी काबीना ने सरबराहान हुकूमत की हैसियत से क्यादत के मुसलसल 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में नागांव लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव की पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। बेल्जियम में पैदा हुए साइंसदान फ्रांसिस हेल्जन को फिजिक्स में 2026 के नोबेल इनाम से नवाजा गया है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत की जीत के लिए 172 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अथॉरिटी के क्याम को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इतलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऐसे में जब मुल्क की मजमू घरेलू पैदावार GDP 7-8% की शरह से तरक्की कर रही है, लॉजिस्टिक्स के लिए मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुल्क भर में कई शाहराहें, रेलवे लाइनें, आबी गुजरगाहें, हवाई अड्डे और नई बंदरगाहें तैयार की जा रही हैं। मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी अगले 10 साल को मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती कौमी ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगी। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि ये इदारा मुल्क में मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के आला तरीन इदारे के तौर पर काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से GDP बढ़ रही है 7-8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए PM गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: काबीना ने छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों में सरमायाकारी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के छोटे और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के तरक्याती फंड के क्याम को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि ये फंड कारोबार के काबिल और फलने फूलने की हामिल आला कदरों वाली छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के लिए तवील मुद्दती सरमाया फराहम करेगा। इसके अलावा ये फंड खिदमात, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा पर मबनी शोबों और स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेन की भी मदद करेगा। काबीना ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करने वाली करारदाद को भी मंजूरी दी। जनाब मोदी साल 2014 में वजीर आजम बने और कल वो हुकूमती सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करेंगे। इतलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 25 साल मुद्दत कार भारतीय जमहूरियत के इस्तेकाम की गवाह है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काबीना मीटिंग में के लिए फैसले MSME शोबे और अगली नस्ल के भारतीय सनती रहनुमा तैयार करने में अहम कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये फैसले SMEs को फलने फूलने, जदीद टेक्नोलॉजियों से हम आहंग होने, मैन्युफैक्चरिंग को उस अद देने, आलमी बाजारों में पहुंच बनाने और आलमी वैल्यू चेन से मरबूत होने के प्लेटफॉर्म की पेशकश करते हैं। وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے براہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے براہموس ایرو اسپیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ 660 کروڑ روپے سے زیادہ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر اندرون

0: दो साल इमरजेंसी लगा के शासन किया और उस इमरजेंसी के समय में संविधान का प्रीएम्बल को बदल दिया। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और आज ये लोकतंत्र की बात करता है।
1: इससे पहले आज अपोजिशन पार्टियों ने खसूसी नजरसानी के अमल में मुबैना बेजाबतगियों और चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुतालबे को लेकर पार्लियामेंट से इंतखाबी कमीशन के हेडक्वार्टर निर्वाचन सदन तक एहतजाजी मार्च निकाला। ताहम सिक्योरिटी अहलकारों ने इंतखाबी कमीशन की जानिब बढ़ते हुए उन्हें आकाशवाणी के करीब रोक लिया। इसके बाद लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर हामियों के साथ आकाशवाणी भवन में दाखिल हो गए और उन्होंने इहाते में एहतजाज शुरू कर दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत उन कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया जो आकाशवाणी भवन के इहाते में धरना दे रहे थे। आज अपोजिशन के एहतजाज के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन ने वजाहत की है कि सहपहर 4 बजे तक किसी भी सियासी जमात ने अपने नुमाइंदों के जरिए उससे मुलाकात का वक्त नहीं मांगा। एक प्रेस बयान में कमीशन ने कहा कि ताहम सहपहर 4 बजे उसे दिल्ली पुलिस से इतला मिली कि राहुल गांधी की क्यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वफद कमीशन से मिलना चाहता है और एक मेमोरेंडम देना चाहता है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा कि 240 अरकान पार्लियामेंट के साथ इस मीटिंग की दरख्वास्त की गई थी और मुजवजा मकाम पार्लियामेंट एनेक्सी था। इंतखाबी कमीशन को ये दरख्वास्त गैर मामूली लगी जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। कमीशन ने कहा कि जाब्ते के मुताबिक ऐसी मीटिंग इंतखाबी कमीशन के इहाते में होती हैं। तिब्बत का 2026 का नोबेल इनाम बेल्जियम में पैदा होने वाले साइंसदान फ्रांसिस हेल्जन को दिया गया है जिन्होंने जुनूबी कुतुब पर मौजूद बर्फ के एक बड़े जखीरे को खला से जमीन तक पहुंचने वाले पुरिसरार जर्रात यानी न्यूट्रिनोस की दरियाफ्त के लिए एक डिटेक्टर में तब्दील कर दिया। 82 साल प्रोफेसर हेल्जन अमरीका की विस्कॉन्सिन मेडिसन यूनिवर्सिटी में पार्टिकल फिजिक्स के माहिर हैं। उन्होंने उस बैन अल-अक़वामी टीम की क़यादत की जिसने जुनूबी कुतुब पर आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी तैयार की। ये एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर है जिसने 2013 में काम शुरू करने के कुछ ही अरसे बाद जमीन के बाहर से आने वाले इंतहाई ज्यादा तवानाई वाले न्यूट्रिनोस की निशानदेही की थी। हुकूमत ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को एयर चीफ मार्शल के रैंक पर 29वां चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुकर्रर किया है। ये तकरीरी 31 अक्टूबर की दोपहर से नाफिजुल अमल होगी। जनाब दीक्षित एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की जगह लेंगे। मर्दों के क्रिकेट में 5 T20 मैचों की सीरीज के तहत लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत की जीत के लिए 172 रन का निशाना रखा है। वेस्ट इंडीज की टीम ने 19 ओवर्स और एक गेंद में 171 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई। अब से कुछ देर पहले भारत ने 5 ओवर्स में 2 विकेट पर 47 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कसीर रुखी मनसूबाबंदी को बरुए कार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मरबूत अथॉरिटी कायम करने को मंजूरी दी है। उसने छोटे और मतवसित कारोबारों के तरक्याती फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों की ये कहते हुए सिताइश की है कि इनसे MSME शोबे को खास तौर से फरोग हासिल होगा। मरकजी काबीना ने सरबराह हुकूमत की हैसियत से क्यादत के मसलसल 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाजों के लिए ब्राह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में नागांव लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव की पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: यह है विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: क्या बदतमीजी है?
2: सुनो भाइयों, सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है। जो पंचों की राय,
3: तूने लड़की को देखा?
2: देखा,
3: लड़की पसंद है।
0: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।
4: दुश्मन

उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
1: हाथ आयु ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो। जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उसे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है।

अभिनेता विनोद खन्ना के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी दिया।

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए।

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान।

इम्तिहान के इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में यह भी पुकारना पड़ा।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। वो बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है
2: भाई। सर क्या
3: जरूर देखा होगा साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लक्की मैन।
1: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना?
2: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगे लाए, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: रक्त की है फेरी है।
1: और ये है फिल्म खून पसीना।
0: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: अमर अकबर एंथनी।

महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई। मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली पेशकश। फिल्म का नाम है आ अब लौट चले।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आज के एक रंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक ही फिल्म के गीत। और आज जो हमने फिल्म लिया है अपने कार्यक्रम में वो है फिल्म बादल।

0: का अंतरिक्ष चैनल है। मीडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में

0: पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि ये अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी